कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है, कहां का उठना और कैसी कयामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं।

तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्मा बरदार हो जाती हैं, और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे।

और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं।

0: जासूस
1: असाय पानी साफ ना है तेंजे करी तसा बीमार ता चाऊ असा के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे
2: केदो सयानो पुत्रा मुंजो
1: बाबा ईयो ही जासूस तांगे बचाइंदो
3: हां साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी सर दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माँ खाधो गरम करे थी बैठा
3: बुध थकल थकल पे लगे घड़ी खरेता
2: तमा जब उठ सुमई न थो पूरी रात माँ तक खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
4: मेरी थकल को भी तेरे
3: तू फल वे माँ अच्छा तू

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कंहिं खाईंदमि
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वे जवाब तदा मिंटन में छिपे सको ईरान जो नयों तजवीज हूं चरैब वारी वाहन कहीं बसूरत में कबूल न कंदा सी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टीवी के इंटरव्यू में डिनो ऐं सदर ट्रंप चयो त अमेरिका जीअं ईरान में वधंदड़ पसंद ऐं चरिया माण्हू मौजूद आहिनि तंहिं असां अञा बि मुआदो मुमकिन आहे उमीद कयां थो त ईरान जी सुठी क़यादत साम्हूं ईंदी ईरान ते मुकमल फतह ज़रूर हासिल कंदासीं उन वाले सां को बि दबाउ न आहे ईरान जंग ख़तम थींदी तेल क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं वेचोबर में ईरान जूं कामयाबियूं किथे ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि नारवरन समुंड ते रुगो ईरान ऐं पाड़ेसरनि जो हक़ आहे अपना हुरमत जी इस्तेमाल ऐं दुश्मन खे मिड़ियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनाई विच ओभर ऐं अपना हुरमत बाबति 10 स्ट्रेटजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं ईरानी सदर मसूद पशान त तहरान दुश्मन आॾो कॾहिं बि कंध न झुकाईंदो गाॾियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइते हटण न पर क़ौम जे हक़नि जी हासिलात आहे सदर आसिफ ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जे वान सदर में मुलाक़ात नायब वज़ीर आज़म इसाक डार स्पीकर अयाज़ सादिक घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में शरीक मुलाक़ात में मुल्क जी मजमूई सूरतहाल अफ़गानिस्तान बाबति मामलनि ऐं खिते तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं मेरकहद जे शहीदनि ऐं पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई सदर आसिफ ज़रदारी चयो त विच ओभर छिकताण ऐं सप्लाई चेन मुतासिर थियण बावजूदि आवाम खे वधि खां वधि रिलीफ फराहम कयो वञे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तियाज नतीजनि ख़िलाफ़ एतिजाज करण उमेदवारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जी धमकी ॾेई छॾी 2024 वारे इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि दौरान साल 2025 चटाभेटी इम्तिहान लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जून ते वठण जो ऐलान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजे आहे त फेल उमेदवार शिकायत लाइ राब्तो कनि एतिजाज खां पासो कनि ॿी सूरत में कार्रवाई थींदी फेल उमेदवारनि खे ॿीहर इम्तिहाननि लाइ तयारी करणु घुर्जे एसपीएस कडियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 जी तकरारी बणियल नतीजनि दौरान कडियल चटाभेटी इम्तिहान 2025 लाइ स्क्रीनिंग टेस्ट 30 मई 2026 ते वठण जो ऐलान कयो वियो

0: शाहपुर शाकर में अंडियातल नौजवान जो शाख में लाश है अस्पताल में मुड़स नौजवान सबक बुटान पैं मदद पान कर पान लाश अस्पताल मुंतकिल कर।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन BDS RDS CNO CRTHO HSA इस्लामाबाद असावड़ बगैर तकलीफ जे दंद कढ़िया नवा दंद लगाया वेंदा आहिन। हर कम जदीद टेक्नोलॉजी सा कयो वेंदो आहे। जरासीम खां पाक औजार वक्त सुबुह 8 वगे खां मंझंद 1 वगे ताईं। पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राबते जे लाइ 0351463088।
4: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाने वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
5: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-88-6-9।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राबते 0320180003।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहराब।

0: स्कूल, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
4: 03013992836।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Ashik Honda Showroom Mehrapur, Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmat, Aimba Akhtar 3S Dealer. आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन के जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिले आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तो असाजी तजवीज़ जवाब देने में जारी माणी देर कर रहे वाहे वह जवाब न तो 10 मिनट में अची पे सकिया। ईरान जो नयू तजवीज़ों चरियाब वालू आहिन कें भी सूरत में कबूल न कंदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी टीवी के इंटरव्यू डिनो। सदर ट्रंप चयो त अमरीका जीअं ईरान में बतदल पसंद में चरिया माण्हू मौजूद आहिनि, तेहरान सां अञा बि मुआदो मुमकिन आहे। उमीद कयां थो त ईरान जी सुठी क़यादत साम्हूं ईंदी। ईरान ते मुकमल फतह ज़रूर हासिल कंदासीं। उन हवाले सां को बि दबाउ न आहे। ईरान जंग ख़तम थींदे ई तेल क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं। चोॾहं नुक़्ता जी तजवीज़नि में मौजूद ईरानी अवाम जे हक़ क़बूल करण खां सवाइ ॿियो रस्तो न आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग जो एक्स ते बयान। मोहम्मद बाकर चयो त हिन मामले में देर अमरीका खे टैक्स ॾियण लाइ ॾुखियाई जो सबबु बणजंदी। ईरान जी एटमी तवानाई जे सरगर्मी चयो आहे त ईरान जे यूरेनियम रचाव वारे प्रोग्राम ते को बि समझौतो न थींदो, जोहरी टेक्नोलॉजी जी ॻाल्हियुनि जो हिसो न आहे। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस अॼु शुरू थी रही आहे। सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमण अफ़्तताह कंदो। पहिरें मरहले में 10 बसूं हलायूं वेंदियूं। 5 खैरपुर खां सखर ऐं 5 खैरपुर खां राणीपुर रोड ते हलंदियूं। खैरपुर बस टर्मिनल ते इंतज़ाम मुकमल। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण MLA नफ़ीसा शाह सां गॾिजी अफ़्तताह कंदो। सूबाई वज़ीर जा महताब डेर ते कातलाणे हमले केस में शहरयार शर पुट समेत देर की अदालत में पेश। अॻूणो MPA शहरयार शर ऐं जहांगीर शर सुप्रीम कोर्ट मां ज़मानत मिलण बाद सिविल कोर्ट में पेश थिया। शहरयार शर चयो आहे त फर्द जुर्म लागू थी चुको आहे, असांखे अदलिया ते मुकमल एतमाद ऐं इंसाफ़ ज़रूर मिलंदो। शाहपुर शाकर में अणॼातल नौजवान जो शाक मां लाश आहे। अस्पताल में मुलिस नौजर साहब गोठाण पंहिंजी मदद पाण तहत पाण लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। घर सां चोर 6 थंभनि मां 11,000 वोल्ट जूं तारूं चोरी करे विया। केतिरनि ॻोठनि जी बिजली बंदि। ॻोठाणनि जो चवण आहे त बिजली बंदि हुअण सबबि ज़िंदगी तकलीफ़ में गुज़रे पई। सेपको इंतज़ामिया नोटिस वठे बिजली बहाल कराए।
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब। रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड।

का शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: Perfect personality, khush mizaj andaaz, mujhe kehte hain RJ Rukhsar. सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप शुक्र जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल चुप चुप सर कूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है।

मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरी पूरी एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में हमेशा की तरह अगर हम वक्त की बात करते हैं तो 11:15 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, आप तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लद नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। फजली खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत है मतलू। वो तमाम तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते प्यार। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आया नू सब जसमल्ला बोंजोर चाओ नी हाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, सारी बातें करेंगे जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना, और इस पहले गाने के साथ ही आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

Akhil's beautiful song. And song ke saath saath aap log mujhe join kar sakte hain ye program mein. Teen tarika card se aap log mujhe simply message kar sakte hain. Simply message karne ke liye apna mobile uthaiye, write message option mein jaiye, SKR type kijiye, space kijiye, message type kijiye, usko send kijiye 8881 pe. Comment karne ke liye hamara Facebook page hai FM 88 GA Sakhar ke page ke upar. Aane ke baad aapko milti hai post pehli zindagi gulzar hai ki uske niche aap log comments ko drop kar सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग. सो कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे. दो अदद सेगमेंट होते हैं हमारे, जिसमें से पहला सेगमेंट जो कि हमारा होता है सुर लगाओ गाना सुनाओ. सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें आप लोग एक अदद गाना सुना के वो गाना उसी टाइम पे प्ले करवा सकते हैं. सो गाना प्ले करेंगे और जो गाना आप गाएंगे वो गाना हम प्ले करेंगे. एंड वो गाना कोई भी हो सकता है. मेक श्योर इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई हम यहाँ पे रोना धोना नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम रोने धोने वाले गाने भी नहीं गाएंगे ना ही प्ले करेंगे. ठीक है. जो भी गाना आप लोग सुनाएं वो गाना अच्छा होना चाहिए और वो गाना इतना अच्छा होना चाहिए कि या सुन के हमारी सुबह खूबसूरत हो जाए, मेरी भी और मेरे सुनने वालों की भी. अच्छा, इसके साथ से जो हमारा अगला सेगमेंट होता है दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में बेसिकली हम लोग करते ये हैं कि एक अदर टंग ट्विस्टर हमारे पास होता है मौजूद, जो कि मैं आपको बताती हूँ. और वो टंग ट्विस्टर उस सेगमेंट में आप लोग कह के दिखा रहे होते हैं. और वो टंग ट्विस्टर जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बार बार लगातार कह देगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. ठीक है जी, तो ये कुछ

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kail. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैकल हबीब रिश्ता भरोसे का
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर ता वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: हाँ बस यही बात है ना, मैं भी तो यही कहती हूँ आप लोगों को।
1: हाँ तो आप जैसा कोई हो नहीं सकता, हम जैसा कोई सुनने वाला नहीं है, तो कैसे?
0: बिल्कुल सही है, मैं एग्री करूंगी आपकी बात से। क्या खूबसूरत बात कही है कि मेरे जैसा कोई प्रोग्राम करने वाला नहीं है, आपके जैसा कोई सुनने वाला नहीं है। वाओ
1: ऐसे हम आपके जो है ना खास लिसनर है सपा घाटी।
0: हाँ जी बिल्कुल, और ये आपका गाना आ रहा है, सुनिए, इंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
1: ओके
0: ओके अल्लाह हाफिज़।

साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करें क्या? चले करते हैं. इस माँ किशोर कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. नजीर खोसो सोबरपुर बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं. मोहम्मद साले लगारी हमें सुन रहे हैं. नियाज हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा जी इस्मा किशोर बहना, आज अगर मेरी कॉल अटेंड हो तो मैं ऊपर जाऊं, वरना बहुत गर्मी है. लगा ले जब लग जाए ना एकदम, तभी आपने ना दौड़े लगानी है छत की और ऊपर चले जाना है. सही है, ऐसे कर लें.

0: बाकी जी नजीर खोसो हमारे साथ साथ मौजूद है, दिलीप कुमार मेघवाल हमें सुन रहे हैं, लाजवाब शो कॉलर भी नेक्स्ट मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम बना।
0: वालेकुम अस्सलाम इस्मा किशोर, देखिए मैंने अभी आपका कमेंट रीड किया और अभी आपकी कॉल भी लग गई है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: मैं तो कॉल लगाने में मसरूफ हूँ।
0: अच्छा, मैंने आपका जो है ना दो कमेंट रीड किए हैं, बाकी ये जो आपने कहा है ना प्रोग्राम करते वक्त मोबाइल साइलेंट रखा कर रहे हैं वरना सब कहेंगे भाइयों ने कुछ नहीं सिखाया बस भेज दिया।
1: ससुराल में कहती है ना बात वगैरह, ये कहते हैं भाई माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया बस भेज दिया।
0: नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मोबाइल साइलेंट ना रखा करे। उन्होंने मुझे ये सिखाया साइलेंट ना रखा करें, अदरवाइज मेरा फोन साइलेंट होता है, यहाँ से जाने के बाद भी सारा दिन जो है ना साइलेंट रहता है, मैं भूल जाती हूँ साइलेंट से हटाना।
1: फिर ये आवाज कैसे आती है?
0: ये यहीं पे आने के बाद आती है। यहाँ से जाने के बाद नहीं आती। यहाँ पे सब डिस्टर्ब करते हैं मुझे और यहाँ से जाने के बाद कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तल्ख हकीकत लेकिन यही है। अच्छा मुझे बताएं गाना कौन सा लेकर आए?
1: शाम का एक तो मेरे नाम करो।
0: ओके, सुनाइए।
1: दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो।
0: ओके, किसी को डेडिकेट करना है? ये सवाल मैं पूछना छोड़ दूं आपसे? चले जबरदस्त। और कुछ? हाँ जी।
1: अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो थैंक्स कहना था मिसेज अली को।
0: हाँ,
1: जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती हैं और उनकी वजह से ही मैं जो है ना छत पे आना जो है ना ज्यादा शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो सही है, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को तो फायदा होता है, अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही। और सर दर्द ने भी की थी वैसे आपकी तारीफ?
1: हाँ हाँ, सर दर्द के लिए वो हमेशा मेरे लिए दो लाइनें लेकर आती हैं, आज मैं उनके लिए दो लाइनें लेकर आया हूँ।
0: हाँ जी, इरशाद।
1: किस कदर शुक्रिया अदा करूँ आपका, किस कदर शुक्रिया अदा करूँ आपका, अल्फाज नहीं मिलते, आवाज मेरी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे कदरदान ना होते।
0: आहा, क्या बात है, वैसे ये मेरे लिए भी होना चाहिए।
1: आप तो सबसे पहले है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: सबसे पहले तो आपके पास ही आए, उसके बाद में ये बहने हमारी जिंदगी में आई और इन्होंने जो है ना इतना अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगता है। अल्लाह करे सब खुश रहे।
0: ओके जी, आमीन सुमा आमीन, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये रहा आपका गाना। अच्छा, इस गाने के शुरू में ये जो काफी सारा म्यूजिक ऐड कर दिया है ना, यहाँ से

0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी
1: पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: Gigi, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज रुखसार आपका मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे रहे कॉल्स के थ्रू तो कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर नेक्स्ट कॉलर रिसीव करने जा रहे हैं. चेक करेंगे जो कॉलर कहाँ से. हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अली मोहम्मद भाई, किधर थे आप?
1: इधर आपके घर में था.
0: कहाँ पे थे?
1: इधर आपके शहर में, करीबी शहर में.
0: मेरे शहर में, करीबी शहर में. ओके, कॉल लगाई नहीं थी या वैसे लगी नहीं थी?
1: नहीं, लगती नहीं थी. बहुत ट्राई कर रहा था लेकिन कॉल नहीं लगती थी. आपका बहुत नंबर मैसेज जा रहा था, बहुत दिनों के बाद ट्राई कर रहा हूँ.
0: अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चले, आज कॉल लग गई.
1: जब कॉल लगती तो रिसीव नहीं होती, बस यही वजह होती है. नसीब की बात है, व्हाट्सएप टॉपिक करने वाले हैं.
0: चले फिर इसी बात पे कुछ सुना दें अच्छा सा.
1: अच्छा, बिल्कुल सुनाता हूँ.

0: और तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी जिसको बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले।
1: ओके, इस गाने का टाइटल क्या है?
0: ये लाइट ऑफ सर का गाना है और फिल्म का नाम तो याद नहीं है मुझे।
1: नहीं दफ्तर का। ओके,
0: और दो लाइन प्यार की आपके लिए।
1: ठीक है।
0: जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, हार हार के जान से प्यारा नहीं मिलता, है जो पास इसे संभाल के रखना, है जो पास इसे संभाल कर रखना, खो कर वो कभी दोबारा नहीं मिलता। मौला आपको सलामत रखे, सब सुनने वालों को अली मोहम्मद बंबरों की तरफ से बहुत सलाम और दुआएं।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मैं गाना साथ साथ आपका सर्च कर रही हूँ, और ये नाहिद अख्तर का तो नहीं, लेकिन ये नूर जहाँ का आ रहा है, कोई सैड सॉन्ग ही आ रहा है। चलिए मैं इसको दोबारा सर्च करती हूँ, तब तक हम एक और कॉल लेते हैं, एंड 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, एंड हम आप लोगों की कॉल्स तो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग प्ले करेंगे, एंड एक और सॉन्ग इज एक और सॉन्ग चेक करें जरा। Next song is very, very beautiful. Singing, enjoy करेंगे, आगे चलेंगे.

ओ किस ब्यूटीफुल सॉन्ग. और आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे, काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. ठीक है, ये कहना है, जल्दी जल्दी कहना है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें. काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. मेरे ख्याल से आज का टंग ट्विस्टर बोलने में बहुत ज्यादा इजी है ना. तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें. एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल सईद. इसको सुनेंगे, सुनते सुनते जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अमले सिक्योरिटी टीम ने गालियन वाले अमल के आसान बनाने हो कुछ जहाज आए अमलो गालियन के बेदौर के नजर में रखने पाकिस्तान में मौजूद रहा बो दौर अजा बाजाबता शुरू ना थे पर आला सतह सफारती रबता जारी है ईरानी परडे वजीर जो पाकिस्तानी दौरे में मौजूद आए इंतजामी लॉजिस्टिक सहूलत जरिए मुमकिन थो हो पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो जो कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना ख्याल के बदल बयानी जो मकसद इलाकई इस्तेहाम अमन वाली कोशिशों के नुकसान पहुंचा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क्यादत के बेमान बार बार मौकफ तब्दील करार दी छो तेहरान के रिजाल यूरेनियम कड़ने मुहिदे से भी अटन जो इल्जाम लगे छो व्हाइट हाउस में साहबिन से गाले डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटिलेटर से है तेहरान गालियन से इतफाक करने बाद फ्री वे तो कें सूरत में कबूल न कदी तेहरान से अजा भी मुहिदे जहा इम्कान मौजूद है ईरानी अवाम के हकन के न मन नतीजो नाकामी का सिवाय कुछ भी न हों ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाज ईरान एटमी प्रोग्राम से ठा न कंदो तेहरान के डिनल 14 तजवीजन जो बो को भी मुतबादल ना है तेहरान अमरीकी देर की कीमत टैक्स दींदड़ अमरीकी शहर के भरनी पवी लबनान में गर्द इसराइली लबनान में कर्द इसराइली फौज जो हमलो छह जणा शहीद सत जख्मी इसराइली फौज सूर के शहर कफिर दोनिन में घर से हमलो किया घर मिट्टी की ढेर में तब्दील थी पो केपीके के इलाके लखी मरव के सराय नौरंग में धमाको सत जणा शहीद 17 का वधिक जख्मी शहीदन में ब पुलिस अहलकार भी शामिल अस्पताल इंतजामिया मौजूद धमाके बाद सत जणन जा लाश अस्पताल आंदा व्या पुलिस मौजूद धमाके में ट्रैफिक पुलिस जा बाहलकार भी शहीद थे जांच जारी है

वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अची वई या 29 सिंध खे कंहिं बि सूरत में विरिहाइण न ॾींदासीं। खैरपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर सदीर इनाम मेमुर चयो त जीडीए खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे। मुक़ाबले जो माहौल ठहंदो, सियासी मुक़ाबले सां जमहूरियत मज़बूत थींदी ऐं चूंडूं वधीक शफ़ाफ़ बणजंदियूं।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी।

0: के नर्थ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569-0300-3883-8569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

Hello, guys. Welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और इसके अलावा जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हमारा एक अलग सेगमेंट जो कि हम शुरू करने वाले हैं, डैट इज बोलो तो माने। बोलो तो माने में हम करेंगे ये कि एक अलग टंग ट्विस्टर आपसे सुनेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बता चुकी हूँ। सो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो है, काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली, ये कहना है आपने। ये कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, यानी कि जो बंदा अच्छा अच्छा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को। सो देखते हैं कि आज कौन अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाता है। हम कॉल्स लेंगे आप लोगों की 03000113488। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग कॉल पे नहीं आना चाहते वो हमें सिंपली मैसेज कर सकते हैं 8881 पे। सो अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FMEDRGA सक्कर। इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।

0: अच्छा, साथ साथ कुछ मैसेजेस को इंटरटेन करते हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं बहुत सारे. हमें मैसेज किया है सुमेरा ने. सुमेरा कहते हैं, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ. सुमेरा आप कैसी हैं? अच्छा, इसके अलावा हमें मैसेज आया है राणा ताहिर भाई फ्रॉम मीरपुर खास. कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रुखसार, जिंदगी गुलजार है, हमको FM 88 से प्यार है, पाक आर्मी को सलाम. अरे वाह, ये तो शेर बन गया, वाओ. अच्छा, इसके अलावा तालुका सिंदरी से हैदर बख्श शर हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच हैदर बख्श शर. और कॉलर मौजूद है लाइन पे मेरे साथ, कॉलर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: खैरियत है, ठीक ठाक. क्या खैर तो है मैम, 5 मिनट पूरे हो गए कॉल चल रही है.
0: 5 मिनट पूरे हो गए कॉल चल रही है. अच्छा, 5 मिनट से कॉल चल रही है. ये देखे ना कि लग गई आपकी बैलेंस. बैलेंस तो नहीं खर्च हुआ?
1: कर्जा लिया हुआ था मैम, कर्जा लिया हुआ था, कर्जा ही मुक गया.
0: अच्छा, कर्जा लिया हुआ था, कर्जा उतर
1: गया, भी मुकने वाला है.
0: अच्छा, ये बात है, कर्जा भी खत्म होने वाला है. लिया हुआ तो फिर उतारेंगे कैसे?
1: बस लिया मैंने तो नहीं उतारूंगा.
0: चलें जबरदस्त, इसी बात पे फिर टंग टूस्टर कह के दिखा दें.
1: गाने का सेगमेंट खत्म हो गया.
0: गाने का सेगमेंट तो खत्म हो गया.
1: आए आए आए
0: आए
1: मार डाला.
0: आज टंग ट्विस्टर कह के दिखाएं सुर में.
1: सुर में?
0: हाँ सुर में.
1: सुर में तो सुलो गाया जाएगा.
0: नहीं, गाना गाते हुए, मतलब गाते हुए टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं आप?
1: जी जी, एक बार रिपीट करें टंग ट्विस्टर क्या है.
0: चले आज ही हम नई चीज ट्राई करते हैं. काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली.
1: काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली.
0: हाँ, इसको गाते हुए कहें.
1: काशान ने काले कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. काशान ने कमरे के कोने में
0: वेरी वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन. क्या बात है.
1: मैंने पहले कहा था मैम, मुझे गाने का बहुत शौक है.
0: बस आज के बाद ना हम आपसे टंग ट्विस्टर गाने में ही सुना करेंगे.
1: सुना दिया करूंगा. असल में क्या है कि मैंने टंग ट्विस्टर पहले सुना नहीं, अगर तो मैं पक्का करता तो और ही सुर में गाता मैम.
0: चलिए जबरदस्त, डेली जो है ना हम आपसे सुर में सुना करेंगे. डन है?
1: डन डन डन.
0: ओके, और कुछ कहेंगे?
1: नहीं मैम, बस बहुत हंसी आ गई है, बहुत खुश.
0: ओके जी, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज. और देखते हैं कि अब कौन इसको सुर में गे पाता है. 03000113488

0: ओके जी, एक और कॉल लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कौन कहाँ से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं?
1: वालेकुम, असद बात कर रहा हूँ।
0: असद बात कर रहे हैं? असद, में मुझे ना आप कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एकदम से कॉल आती है ना, मैं कहती हूँ कौन बात कर रही है। ऐसा इत्तेफाक कभी किसी को कॉल करते हुए हुआ है आपको? होता रहता है। चले जबरदस्त। अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
1: वो भी सुनाए।
0: सुना दे फिर, बोल दे।
1: आशान ने कमरे के कोने से काली कंघी निकाल दी। आशान ने कमरे से काली कंघी निकाल दी।
0: आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
1: आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे में कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
0: और कुछ कहेंगे?
1: बाजी सॉन्ग सुना दे अच्छा सा कोई।
0: कौन सा?
1: जो भी है वो जो पाकिस्तानी कॉन्टेंट है वो सुना दे।
0: चले मैं आती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।

कि जी ये हम कुछ प्ले करना चाह रहे हैं, प्ले कुछ और हो रहा है. बच्चा नो इश्यू नो इश्यू, हम प्ले करेंगे एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय हसन एंड रोशन. सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851 आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डीपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
1: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
0: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
1: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज रुखसार है आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे. और इसके अलावा जी हमारा सेगमेंट जो अभी तकरीबन कुछ देर पहले हुआ, दैट इज बोलो तो माने. तो बोलो तो माने में किसने टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा बोला है वो हम बताएंगे आपको. उससे पहले कुछ कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. नियाज हुसैन मलक हमें सुन रहे हैं, इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, अब्दुल रज़ाक हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से और कहते हैं शो जबरदस्त है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है. मुझे क्या पता, आप बताएंगे ना मुझे कि जबरदस्त है या नहीं. इसके अलावा हर्ष चंद्र राय कोहली हमें सुन रहे हैं, जिंदगी में हमेशा ऐसे इंसान बने जो किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि दिल जीतने का हुनर हर किसी को नसीब नहीं होता. वाओ, वेरी वेल सेड.

भाई जिनकी शादी उनकी शादी, ओएसडी सॉन्ग सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. आज चलेंगे आगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: छा अहां जो चेहरो बेचान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
0: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो हाणे वक़्तु आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयारु कयल जेका ॾे कुदरती निखार साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूसु करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: इस्मा किशोर कमेंट कर रहे हैं, तेरा होकर देख लिया है मैंने, रोकर देख लिया है, इश्क में पागल होने से कुछ नहीं होता, मैंने पागल होकर देख लिया है। वेरी गुड, मतलब अकल आ गई है। ओके, वेरी नाइस। ओके जी, लास्ट लकी कॉलर्स में चेक करते हैं आज किसकी कॉल लगती है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी जी, खैरियत है? कौन बात कर रहे हैं भाई, नाम बताइएगा।
1: गुलाम लगारी से।
0: गुलाम लगारी से कौन?
1: गाजी खान रिंद।
0: ओके जी, गाजी खान रिंद भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुनाओ, क्या कह रहे थे?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताएं कि लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात है कि साथ एकती करो, वालदेन का खिदमत करो, वालदेन का ख्याल करो, और डॉक्टरों बच्चों के ख्याल करो, ये अच्छी बात है। और देखिए काम किया करो, करो अल्लाह का इबादत करो, ये अच्छी बात है।
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
1: और फिर कह रहे थे नंबर ही नहीं लगता है, बड़ी मुश्किल से लगा
0: कॉल, बड़ी मुश्किल से लगती है, बस क्या रश है ना हमारी शो में, तो इस वजह से सबकी यही शिकायत है कि कॉल नहीं लगती।
1: कॉल नहीं लगती।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल,
0: चलिए हमने बहुत सारा ख्याल रखे, मैं प्ले कर

गाना है और गाना ऑलमोस्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग की तरफ हम मूव करेंगे एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग जो कि मैं प्ले करूंगी आप लोगों के लिए और इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और इसी के साथ प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. सो इसका मतलब ये है कि आपसे मेरी चिट चैट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान दिशाओं से तहफ्फुज़ दे, कोर्चिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.
1: See ya.
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: गुमराह कन्नड़ कराड़ी छो पड़े खाते मौजूद इस्लामाबाद गारन लाए अमेरिका ईरान का केतरा ही जहाज पाकिस्तान पौता जिनो मकसद सफारती अमले और सिक्योरिटी टीम ने गाल अमल के आसान बनाने हो कुछ जहाज ए अमलो गाल बे दौर के नजर में रखे पाकिस्तान बो दौर अजा बाजाबा शुरू ना थे पर आला सतह सफारती रबता जारी है ईरानी पटेई वजीर जो पाकिस्तानी दौरों पर मौजूदा इंतजामी ए लॉजिस्टिक सहूलतों जरिए मुमकिन थो हो पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो जैसे कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कदमन से ताल्लुक ना है ख्याल के बदल बयानी जो मकसद इलाकई सखाम अमन वाली कोशिश के नुकसान पहुंचाना है।

0: ईरानी अवाम जे अगन के न मञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझ बि न हूंदो। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाग चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठा न कंदो। तेहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़नि जो ॿियो को बि मुतबादल न आहे। तेहरान अमरीकी देर जी क़ीमत टैक्स ॾींदड़ अमरीकी शहरनि खे भरणी पवंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जे नंढे ऐं विचोले कारोबार सनअतनि खे सहूलियतूं फराहम करण बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त एक्सपोर्ट ते वधल सनअत ऐं मुल्की तरक़ी जा हदफ़ हासिल करणु अंतर आहे। हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाध ऐं सनअतनि खे सहूलियतूं ॾियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनअतनि खे हथी ॾियण लाइ रथाबंदी कई वञे।
1: पेज पर हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, पूरी कॉम सब एक पेज पर हैं। कोई आपस में कोई डिफरेंस नहीं। ये फॉर्म गैप तक, सोशल मीडिया गैप तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं। आप लोग क्योंकि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में दूसरी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वफाकी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया। आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप इसमें सिंध की तकसीम भी लेकर आ गए। सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 2800 तरमी में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है। ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
0: वफाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अचे या 29, सिंध खे केर बि ऐं कॾहिं बि विरहाए नथो सघे। खैरपुर में पीपल्स बस सर्व जे इफ़्ताह वारे तकरीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त GDA खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक आहे, सुठो कमु करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद कई पई वञे, सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे। शर्जील इनाम मेमण खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह कयो। खैरपुर KPK जे इलाइक़े लखी मिरवत जे सराय नोरंग में धमाको, 7 ॼणा शहीद, 17 खां वधीक ज़ख़्मी। शहीदनि में ॿ पुलिस अहलकार बि शामिल। इस्पताल इंतज़ामिया मूजिबि धमाके बाद 7 जा लाश इस्पताल आंदा विया। पुलिस मूजिबि धमाके में ट्रैफिक पुलिस जा ॿ अहलकार बि शहीद थिया आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। बारह मई 2007 जे साने खे 19 साल

ॿिनि केसनि में जांच आफ़िसर जो बयान कलम बंद। एयरपोर्ट थाणे जो जांच जो आफ़िसर नज़र मोहम्मद मंगरियो केस प्रॉपर्टी पेश करण में नाकाम। अदालत पारां सख़्त कावड़ जो इज़हार। अदालत जांच आफ़िसर खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते केस प्रॉपर्टी पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में टे ॼणा क़तल, हिकु ज़ख़्मी। गुलशन में मारबट सां साहिब खान पुट मुसाफ़िर खे क़तल कयो वियो। बल्दिया वारे इलाइक़े में नादन बाईपास ते एल पी जे गैस कंपनी जे वेझो फायरिंग। नौजवान गुलाब पुट यूसफ क़तल। न्यू सब्जी मंडी वेझो हिंगोरा गोठ वटि फायरिंग में सईदुल्ला क़तल, हिकु ज़ख़्मी थियो।

लकी गुलाम शाह में उर्ली वगे वाली बारड़ो फौज केतरा ही मर्ज में वरतल गोट ड्रिप डावरी में चैन साल बारड़ो शाहजेब डावी उर्ली वगे फौत थो फोती बारे जो नंढो भाव मसूर भी उर्ली सबब गणती जोगी हालत में अस्पताल दाखिल इलाके में बया बार भी उर्ली में वरतल भरसा गोट अब्दुल गफूर बुरलो में बुरड़ा ब्रदर के बिंदुड़ में प्लाट के तकरार था झेड़ो 10 जना जख्मी लथियो ए कुहाड़ियों लगन सब 5 औरतों समेत 10 जना जख्मी थी पिया आई नादरीन लबनान में एक घर ते इसराइली फौज जो हमलो 6 जना शहीद 7 जख्मी इसराइली फौज सोर्ज शहर कुफर दोनेन में घर ते हमलो कयो घर मिट्टी के ढेर में तब्दील थी पाया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर रफीक अहमद, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA इस्लामाबाद। असां वटि बगैर तकलीफ़ जे ॾंद कढिया ऐं नवां ॾंद लॻाया वेंदा आहिनि। हर कम जदीद टेक्नोलॉजीअ सां कयो वेंदो आहे। जरासीम खां पाक औज़ार। वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं। पतो नज़्द गुल होटल हालाणी। राब्ते जे लाइ 0301 63 0888। खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0300

0: 1623 793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।

0: क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा शानदार. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और यहाँ पर आपके सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे. यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर जो हमारे लिसनर्स है वो हमें सुन रहे हैं तो जनाब कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं. ओके जी, तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो आप क्या तरीकेकार फॉलो करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं. तो आप ऐसा करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप जीए लारकाना FM 88.8 के पेज के ऊपर आ जाएंगे. और जीए लारकाना FM 88.8 का पेज अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है. वहां पर आप आकर क्या करेंगे जी, आप जैसे ही आते हैं पेज पर तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर लोग ऐसे जो कि हमें मैसेज भी नहीं कर सकते हैं, कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोग्राम में कॉल्स भी ली जाती हैं. और कॉलिंग वाला जो सेगमेंट होता है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो नंबर भी 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा. ओके जनाब, तो प्रोग्राम में आप लोगों के साथ खूबसूरती की बातें करेंगे और जानेंगे जरा कि आप लोगों की स्किन क्या चाहती है. ऐसा होता है कई मरतबा कि हम बड़ा जो ना वो इस सोच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ना तो नॉर्मल टाइप है, ना तो सेंसिटिव है, ना ही हमारी स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सूट कर पाता है. तो कई मरतबा ऐसा सीन हो जाता है हमारी जिंदगी के अंदर जो हम खुद भी समझते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए. तो जब आप देखें ना कि आपकी जो स्किन है वो जो है ना उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, आप इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं. आपकी स्किन जो है वो ना तो ग्लो में आ रही है, ना तो आपके चेहरे के मसाल खत्म हो रहे हैं, बस आप जो है परेशानी की जानिब जा रहे हैं. तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना उनके बारे में जानना है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है. तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या ऐसे फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्या ऐसे फायदे हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं. तो अच्छे तरीके से पहले सुन लिया करें और समझ लिया करें कि कौन से प्रोडक्ट आपने क्यों इस्तेमाल करें, उसके बाद ही आप लोगों ने सोचना है और फैसला करना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है. तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो आप लोगों को बताते चलें कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश है, उसके अलावा व्हाइट एज का जो है ना वो डॉक्टर पिंपल नाम से ट्यूब है जो कि एक्ने के लिए ट्यूब है, आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार शुदा, और व्हाइट एज की लवली क्रीम है. और जनाब उसके साथ साथ व्हाइट एज का हेयर रिमूवल जो है ना वो भी लोशन है जो कि 3 अलग मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है. उसके साथ साथ अगर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है. ये डी स्किन में 2 प्रोडक्ट्स हैं, बाकी व्हाइट एज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो इन प्रोडक्ट्स में क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को बताने वाली हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल जी पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को मैं बताती रहूंगी और आप जानते रहेंगे. तो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहते जाइएगा और यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जाइएगा. बताइए कि आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है चाचा खालिद जुड़े जो वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहते हैं. लिखते हैं शो इज गोइंग ऑफ व्हाइट एज लवली क्रीम एंटी स्किन क्रीम ऑल प्रोडक्ट्स. बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, एंजॉय करें आप हमारा प्रोग्राम. आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल हुसैन. हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. प्रेमचंद भाई हमें सुन रहे हैं, प्रेमचंद भाई आपको भी वेलकम हो गया. संजय जयपाल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी. मोहम्मद जमान हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, उसके अलावा है महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ, कहते हैं ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे एंड ग्रेट प्रोडक्ट्स बाय व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इस बात में. तो और नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम जी. और ये है अमानुल्ला महर भाई, वालेकुम अस्सलाम. और हैं जी, अच्छा याकूब मंगी भाई हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. चाचा खालिद कहते हैं कि शो का प्रोमो इज वेरी अट्रैक्टिव, शानदार प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, व्हाइट एज लवली क्रीम एंटी स्किन क्रीम. हाँ जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा आपको मजा आएगा. और वरियाम अली जो तो ये हमारे साथ मौजूद है, चलें जी आपको भी वेलकम करते हैं. आप ऐसा करें, आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, सारे लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि जनाब मार्केट में अब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और आप लोगों ने जो है ना वो अवेलेबल कराने अपने करीबी जनरल स्टोर पर और वहां से जाकर आपने परचेज भी करने हैं. तो जल्दी जल्दी से आप जो है वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए और मुझे बताइए आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं और क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं या अभी तक नहीं। तो मैं यहाँ पर जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाती हूँ और फिर जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।
1: It's 1:30 p.m. This time. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream. This program is brought to you by
3: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-5769।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुझे एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, तो सुनने वाले समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप बताएं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से सुन रहे हैं ये भी बताएं और कौन हमारे साथ है ये भी बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सा कॉन्टैक्ट जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर वो डायल करना है जिसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आप उन्हें बताएंगे कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपने बस इतना सा काम करना है कि आपने ये नंबर डायल करना है जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए, आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो ये जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे। इससे ये होगा कि भाई आप लोगों ने अब ऐसा नहीं सोचना कि हम कहां से जाकर परचेज करेंगे, हमारे एरिया में तो मिलते नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, ये वाले जो ऑप्शन है ना ये आप लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। तो बस आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर परचेज करते जाइए। ओके जी, साथ साथ यहां पर आप लोगों को बताया जाता है कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती किस तरह से बढ़ती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात का आगाज करेंगे तो यहाँ से करेंगे कि आप लोगों को बताया जाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, आप लोगों को पता है कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जल्द को नरम मुलायम और तरोताजा बनाती है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो हमेशा पुरकशिश रहे, ब्यूटीफुल रहे, हसीन रहे, सुंदर रहे, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल के बाद जो है ना आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, बेरोनकी हो, ये सारी चीजें कम हो जाती है जबकि आपकी जल्द जो है ना वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लगती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खास अज्जा जो कि आपकी जल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर करते हैं और रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आता है। तो आप सारे लोग इस्तेमाल करके देखिएगा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर स्किन टोन जलाए तैयार कई वही अगर तुम मर्द आयो तो मर्द भी लगाए सकता, खवातीन भी लगाए सकती हूँ। उनका अलावा तुम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम से गड व्हाइट एज ब्यूटी साबुन जो इस्तेमाल करना आई व्हाइट एज ब्यूटी सोप अगर तुम नथा लगान चाहो तुम चौथा दबा पास फेस वॉश वारा मानू है फेस जरा व्हाइट एज की लवली क्रीम के बारे में जो कि भाई जेका पांचों मिसाल जो ना पाण ही है अगर तुम इस्तेमाल करण चाहियो था गर्मी जे मौसम में का एड़ी फेयरनेस वाली क्रीम जेका तुम इस्तेमाल कयो तुम्हां जी स्किन के हिफाजत भी पहुंचाए तुम्हां जी स्किन जी हिफाजत करण सा गडो तुम्हां जी स्किन के निखारे भी, तो तुम्हां जला व्हाइट एज जी लवली क्रीम मौजूद आहे। आई व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे ना इन जे अंदर 3 विटामिन जा कैप्सूल मौजूद आहे जेड़ी तरीके सा तुम्हां इस्तेमाल करना तो तुम्हां के खबर होजन घुरजे इन जे अंदर विटामिन B3 मौजूद आहे, विटामिन C मौजूद आहे, विटामिन E मौजूद आहे, आई बिया खोड सारा वाइटमिन्स आहिनि जेके तव्हां जी स्किन जी हिफाज़त कंदा। ऐं ॿी सभ खां वॾी ॻाल्हि त व्हाइट एज लवली क्रीम जेका हिन जे अंदर तव्हांखे सनस्क्रीन बि मिलंदी, यानी अगरि तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लॻाए उस समय वञो था या कोई कमु कयो था या तव्हां कॉलेज गर्ल आहियो, यूनिवर्सिटी गर्ल आहियो या स्कूल गर्ल आहियो, स्कूल में भले ही सिर्फ़ छोकिरियूं न लॻाईंदियूं बल्कि छोकिरा बि लॻाए सघनि था, त तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न प्रोटेक्ट बि कंदी सन जे यानी कि जेके उस जा मॉइस्चराइज़र स्टार्ट हूंदा आहिनि जेके उस जा किरणा तव्हांखे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि उन्हनि सभिनी चीज़ुनि खां। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जेका तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे, हिकु फेयरनेस क्रीम आहे जेके तव्हां ॾींहं जो बि लॻाए सघो था ऐं तव्हां राति जो बि लॻाए सघो था, तमामु परफेक्ट ऐं ख़ूबसूरत फार्मूलो आहे जेको तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो, वाइटमिन सां भरपूर आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन जो लुक ॾींदी, सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी, न वधाए त बाबा पोइ चइजो ऐं लॻाए ॾिसो हुन सां गॾोगॾु जेको आहे न। हाँ जी, बिया भी खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांखे आराम आराम सां आस्ते आस्ते सभु ॿुधाईंदा ईंदासीं, हिकु मना त सभु न ॿुधाए न जेके तव्हां सम्झी बि सघो तव्हां हज़म बि करे सघो। सो व्हाइट एज जा ब्यूटी प्रोडक्ट जेके तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ न अवेलेबल आहिनि, सो तव्हां बसि पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वञो, उतां नालो वठी करे परचेज़ करे अचो। अगरि नाहिनि तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल त पोइ तव्हां डायल कयो 03
ही नंबर तव्हां जे आसानी जे लाइ आहे. तव्हां हिन नंबर ते रातो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल कराए सघो था. सो बिल्कुल जी अवेलेबल करायो, ख़ूबसूरत थींदा वञो. तव्हां सभिनी जो हक़ आहे ख़ूबसूरती हासिल करण. ऐं हाणे तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल आहिनि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो. उन सां गॾोगॾु असांजी लिस्ट में गाना मौजूद आहिनि. सो मां चवां पई त गाना बि हलायूं, साथ साथ गाना बि इंजॉय कयूं. सो ही हिकिड़ो सॉन्ग आहे चमन मीराली जी आवाज़ में. हिन गाने खे ॿुधंदासीं. ऐं तव्हां केरु केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे, किथां खां असांखे ॿुधो पिया, तव्हांजे मैसेज तरफ़ बि ईंदासीं.

ओके जी, सो हिते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तव्हांजा फीडबैक, तव्हांजो ॻाल्हियूं, तव्हांजो कचहरियूं जेके तव्हां मूंसां कंदा आहियो. सो मां सोचां पई तव्हां जेको न पैनल तां असां स्टार्टिंग कयूं या कॉमेंट जी तरफ़ अचूं. ओके, सो पैनल ते अचूं था. पैनल ते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि. अच्छा, ये आशिक अली मलाह हमारे साथ है, गोठ अर्ज मोहम्मद लगारी से. हाय डेडिकेट नसीर माशी को करते हैं आप गाना, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम करते हैं. नूर से दुनिया भाई हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम बदीन. अदी सिद्रा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी सुमा आमीन. और ये हमारे साथ मौजूद है आशिक अली मलाह भाई, आपने दोबारा से वही मैसेज सेंड कर दिया है, सो बहुत शुक्रिया. और चाचा खालिद कहते हैं बेटा गाने की रिक्वेस्ट है. ओके जी, आई विल ट्राई. और ये गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू है, कहते तुम्हारा जो शो वेरी नाइस आ है, मोहब्बतों प्यारे भाजू. ओके जी, मायरा भी असने प्रोग्राम बुधे पई, मायरा तमा जो भी मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पया. इन का अलावा जेको ना फेसबुक वाला मानू तमा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा लो, सही आ, जेत्रो तमा शेयरिंग कंदा ओत्रो मजो इंदो आए. सो शेयरिंग तमाम घणी कंदा करो.

हा भैया हक़ीक़त त जेके माण्हू तव्हांखे प्यारा हूंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जो तव्हां सदाई खेर घुरंदा आहियो ऐं उन्हनि माण्हुनि जे स्किन जो बि खेर घुरो बाबा ऐं पंहिंजे पेरेंट्स सोणनि खे जेको आहे न वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जेको आहे न तोहफ़ो कयो या फिर उन्हनि खे तव्हां मशवरो ॾियो त हाणे मार्केट में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अची विया ऐं तव्हांखे वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करिणो आहे ऐं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे चङे तरीक़े सां ख़बर आहे त तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो जेके प्रोडक्ट तव्हांजे स्किन जे मुताबिक़ तयारु थियल आहिनि ऐं जंहिंमें तव्हांजे लाइ सभ खां बहितरीन अगरि ॾिठो वञे त प्रोडक्ट आहे वाइट एश जी लवली क्रीम ऐं वाइट एश जी लवली क्रीम हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको हिन में एज लिमिट बिल्कुल बि न आहे तव्हां हर उमिरि में हिनखे लॻाए सघो था तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बणाईंदी तव्हांजी स्किन खे निखारींदी तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदी छो त हिन में सनस्क्रीन बि एड थियल आहे सो बाबा एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट अगरि मार्केट में अवेलेबल आहे त तव्हां वठो चून पिया

was in it. ओकरी सनावला ब्रोई हमारे साथ मौजूद है. हेलो वालेकुम अस्सलाम. सबा खालिद, आपने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया जी, बहुत शुक्रिया. क्या स्मार्ट किशोर भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम. वैसे अभी आपकी गुड मॉर्निंग हुई है, क्या बात है. और वेलकम करते हैं आपको भी. और ये अली मोहम्मद कुंदर भाई हमारे साथ है. गुड आफ्टरनून. मोहम्मद ताहिर लुंड बलोच हमारे साथ मौजूद है, वेलकम भाई को करते हैं. आशिक अली जलबानी हमारे साथ है. आशिक भाई आपको भी वेलकम हो गया. एक एक कलहोड़ो हमारे साथ है, कहते हैं आप ही फर्स्ट टाइम में आपका शो सुन रहा हूँ. अच्छा नहीं, आयशा हमारे साथ मौजूद है. आयशा हेयर हमारे साथ है और आप पहली मरतबा हमारा शो सुन रही है. वालेकुम अस्सलाम. आयशा को वेलकम करते हैं. और आयशा आपको भी मशवरा देंगे कि आप भी जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कीजिएगा अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो हमेशा खूबसूरत रहे. तो अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप सोचिएगा जरा. वैसे हर किसी का ये ख्वाब होता है कि उनकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहे. तो आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा. हिदायतुल्लाह कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे तो मैं किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे. वाह. अच्छा उनके अलावा चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो एंड वाइट एज लवली क्रीम शो लाइक, क्या बात है, यानी कि आपको बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया जी. किशोर भाई कहते हैं कि मुंह कड़े यूनी जो मुंह भी कौन डिठो आ, पर सब मुखा पुछन आए ने डियो खबर अजकल अच्छा पया पड़ो. माशाल्लाह माशाल्लाह. स्कूल है तो डिठो दवे ना भला, एतरो काफी. अच्छा शहबाज भाई हमारे साथ हैं, वेलकम हो गया. प्रेमचंद भाई हमें सुन रहे हैं, प्रेमचंद भाई आपका भी वेलकम. दर्दे दिल आ चुकी हैं, दर्दे दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी. और हैं जी, और कौन है. अच्छा हाँ, फायजा अली जा गाना बिल्कुल ताँ के बुधराइंदासी. फायजा अली जी रिक्वेस्ट भी काफी सारी जमा थी भैया है. सो फायजा जो बिल्कुल गाना बुधनासी. कश्यप असा सगन मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कश्यप. अच्छा कहती है कि आज मुझे लग रहा है कि आप नहीं आई हैं. अब पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो आई हूँ और आपको कश्यप वेलकम करते हैं.

ओके जी, सो अज तव्हां जो कॉल्स त बिल्कुलु वठंदा सी, पर मां इहो सोचां पई त तव्हां जेके कॉलर्स मूंसां कॉल ते कनेक्ट थींदा, कॉल कंदा, या फिर तव्हां जेके बि माण्हू मूंखे मैसेज कयो था या फिर कॉमेंट कयो था, तव्हां सभु मूंखे इहो ॿुधायो त हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि खैर सां प्रोग्राम कंदे, मतिलबु इलाही ॾींहं थी विया आहिनि, सो तव्हां मूंखे अॼु इहो ॿुधाईंदा त तव्हां छा हिन महिल ताईं को प्रोडक्ट वरितो आहे या सिर्फ़ु अञा ताईं प्रोग्राम ॿुधो पियो? अछो त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी न मतिलबु जेका शइ ॿुधंदा आहिनि त उहो मिंट में वेठी ईंदा आहिनि, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी वरी इंतज़ारु कंदा आहिनि, थोरो इंतज़ारु न बल्कि इलाही सारो इंतज़ारु कंदा आहिनि। तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हां अञा ताईं जेको आहे प्रोडक्ट वरिता आहिनि या फिर सिर्फ़ु तव्हां सोचो था त मूंखे वठणु घुरिजनि, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु चाहियो था इहो बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा। अच्छा, आदिल हुसैन आप हमारे साथ मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी। और अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी आपको भी। और जतिन बिश्त हमारे साथ हैं, वेलकम।

इतना प्यारा गाना मैंने लगाया तो ये गाना किसको डेडिकेट जाता है, तो जरा उसकी जान भी आता है। ये प्यारा सा गाना हमें डेडिकेट किया है जी हमारी प्यारी लोबी ने, और हमारी प्यारी लोबी हमारे साथ मौजूद है। लोबी क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। अर्जी भुट्टो से आप हमारा शो सुन रही है, वेलकम। और कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुश नसीबी है। तुम्हारे साथ गुजारे लम्हात मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं लगा कैसे एक घंटा गुजर गया। तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें घंटों बैठ कर देखा जा सकता है। पता है लोग कहते हैं कि खूबसूरती और वफादारी एक इंसान में नहीं होती, मगर मैंने तुम में दोनों देखे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस लड़की से मैंने दोस्ती की वो खूबसूरत होने के साथ साथ वफादार भी है। लोग कहते हैं कि दोस्त बर्बाद हमेशा कर देते हैं, मेरे साथ रहना मेरी पसंदीदा दोस्त बनकर। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही साथ रखे, आमीन आमीन सुमा आमीन। वैसे इतना इमोशनल कर दिया आपने ये प्यारा सा मैसेज लेके, थैंक यू सो मच। वैसे ये ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी इंसान में कुछ भी तलाश करते हैं, चाहे वो वफादारी हो, खूबसूरती हो या मोहब्बत हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो अगला इंसान जो होते हैं ना उसके अंदर वो चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप वफादार हैं, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, मुखलिस हैं, साफ दिल के इंसान हैं, तो आपको सारे लोग वैसे ही लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर भी आती है। तो मेरी प्यारी लोबी आपको वेलकम करती है, आप हमारे साथ मौजूद है। और आप भी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, बहुत बढ़िया जी, इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। और बाकी असंद लगाई तरी तो खूबसूरत आयो तमाम जी बारिया तमाम भी लगायो। अली अकबर ब्रोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी। यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है कि हम न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। बस आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम
0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत खे बेमान ऐं बार बार मौक़िफ़ तब्दील कंदड़ करार ॾेई छॾियो। तेहरान ते रचियल यूनियम करण जी इजाज़त ॾियण वारे मुआहिदे तां बि पोइ ते हटण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटीलेटर ते आहे। तेहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फ्री वञे थो, कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। तेहरान सां अञा बि मुआहिदे जा इम्कान मौजूद आहिनि। ईरानी عوام जे हक़नि खे न वञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझु बि न हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाद चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठाह न कंदो। तेहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़नि जो ॿियो को बि मतबादल नाहे। ईरान जे पार्लियामेंटी कमीशन तर्जमान इब्राहिम रज़ाई चयो त ॿीहर हमिलो थियो त तेहरान यूरेनियम जो रचाव 90% ताईं वधाए छॾींदो। मामले जो पार्लियामेंट जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो मूजिबि फ़ैसिलो कयो वेंदो। ईरान ख़िलाफ़ अमरीकी ऐं इसराइली जंग में यूएई बि शामिल हो। अमरीकी मैगज़ीन वॉल स्ट्रीट जर्नल जी छरकाईंदड़ रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि जंग दौरान गडि॒यल अरब इमारतनि ईरान जे लावान बेट ते आयल रिफाइनरी खे निशानो बणायो, जंहिं सबबि रिफाइनरी खे बंदि बि कयो वियो। हमिलो अप्रैल में अहिड़े वक़्तु कयो वियो जंहिं वक़्तु अमरीकी सदर ईरान सां जंगबंदी जो ऐलान करण वारो हो। जंग में शमूलियत ते यूएई जी शमूलियत जी अमरीका ख़ामोशीअ सां आजियां कई। जवाब में ईरान बि यूएई ऐं कुवैत ते हमला कया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जे नंढे विचोले कारोबार सनअतनि खे सहूलतूं फराहम करण बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त एक्सपोर्ट ते ॿधल सनअत ऐं मुल्की तरक़ी जा हदफ़ हासिल करणु अंतर आहे। हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाध ऐं सनअतनि खे सहूलतूं ॾियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनअतनि खे हथी ॾियण लाइ रिथाबंदी कई वञे।
5: सब एक पेज पर रहे इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, पूरी कॉम सब एक पेज पर है। कोई आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं भेजी। ये फॉर्म गैप तक, सोशल मीडिया गैप तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं। ये जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में जितनी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। जब वफाकी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया, आनी नहीं आनी ये पता नहीं है, आप उस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए। सेक्शन की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 28वां 2800 तकदीम में आ जाए, सिम की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है, ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
4: वफाक ऐं सिंध हुकूमत विच में ख़िलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अचे या 29 सिंध खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध में पीपल्स पार्टी जो केरु बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक ऐं सुठो कमु करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वञे, सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे। शर्जिलीना मेमोन खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह कयो। सिंध असेंबली में गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ पेश। हुकूमत पारां हिमायत एमक्यूएम जे मेंबर बल्कीस मुख़्तियार कारे इल्ज़ाम हेठि औरतुनि जे थींदड़ क़तलनि ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो। बल्कीस मुख़्तियार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए। सूबाई वज़ीर अज़रा पेशियो चयो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल

12 मई 2007 जे साने खे 19 साल मुकम्मल शहर में रत जी होली खेॾंदड़ कानून जे कटड़े में न आया। सिंध में वकीलन पारां अदालती कार्रवाईनि जो बायकॉट, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो ऐं नवाबशाह में वकीलन पारां अदालती कार्रवाईनि जो बायकॉट कयो वियो। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में 12 मई 2007 असाने जे छहनि केसनि जी ॿुधणी। कराची जो गुणमेर वसीम अख्तर ऐं ॿिया नामज़द जवाबदार पेश। जेल कॉम्प्लेक्स में थियल ॿुधणी दौरान ॿिनि केसनि में जांच आफ़ीसर जो बयान गलम बंदि। एयरपोर्ट थाणे जो जांच आफ़ीसर नज़र मोहम्मद मगरियो केस प्रॉपर्टी पेश करण में नाकाम। अदालत पारां सख़्त कावड़ जो इज़हार। अदालत जांच आफ़ीसर खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते केस प्रॉपर्टी पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में 3 ॼणा क़तल, 1 ज़ख़्मी। गुलशन मां मार भर सां साहिब खान पुट मुसाफ़िर खे क़तल कयो वियो। बल्दिया वारे इलाक़े में नॉर्थन बाईपास ते LPG गैस कंपनी वेझो फायरिंग। नौजवान गुलाब पुट यूसुफ क़तल। यू सब्जी मंडी वेझो हिंगोरा गोट वटि फायरिंग में सईदुल्ला क़तल, 1 ज़ख़्मी थियो।

0: हरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000072734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03085569।
4: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाणे वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ, नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो। जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
7: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
8: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
10: 03013992836।
11: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
12: It's 2:15 PM.
13: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: चाहते हैं या फिर आप अवेलेबल नहीं कराना चाहते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम जानना चाहते हैं. तो वेल, आज हम जो है ना आप लोगों की कॉल्स पे करेंगे या फिर अगर आप हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप मुझे जरा ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल हैं, आप लोगों ने मालूमात ली या नहीं. मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था कि भाई आप जरा मालूम करके मुझे ना बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो वाइट एज के प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स हो. जरा मुझे पता हो कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं या फिर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो वो आप जरा ना मेरी थोड़ी सी मदद कर दें ताकि मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मिल रहे और कहाँ कहाँ पर अभी तक नहीं मिल रहे. तो मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी कि भाई आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो आप परचेज कर चुके हैं या फिर नहीं, और उसके अलावा अगर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है जनाब 03-15-799-0595. ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज करते जाइए. अभी हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के कॉल्स की जानेब आएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बताते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जनाब, ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है माइक्रो बीट फार्मुलेशन के साथ साथ. और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके जल्द की खूबसूरती को बढ़ाती है और आपके जल्द की हिफाजत करती है. और जनाब, इन तमाम चीजों को देखते ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है. एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा रखती है. और जनाब, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द बेरोन की जो है ना आपके जल्द पर वो खत्म हो जाती है और आपका चेहरा ज्यादा साफ और रोशन और दिलकश दिखाई देता है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 2 रातें अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं और आपकी खूबसूरती में इजाफा आ जाता है. तो रोजाना इस्तेमाल से आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती मिल जाएगी जनाब. तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें, 2 रातें लगातार इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लगाते जाएंगे, आपको खूबसूरती मिलती जाएगी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको जो है ना वो डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है. फेस वॉश तो भाई बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, तो आप ये फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा. डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो जनाब सीरम के साथ साथ तैयारशुदा है. इतना जबरदस्त है कि आप लगाएंगे तो कहेंगे भाई वाह क्या बात है, मजे आ गए. तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए. बाकी रही बात आपकी कॉल्स की, तो आगे कॉल्स की जानब हम आते हैं. और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं. तो कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए है 03-22-13-22-88. सारे लोग अब कॉल्स की जानब आ गए. अच्छा, फेसबुक वाले जितने लोग हमारे साथ ही पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. ओके जी, तो हम जरा ये वाली कॉल पिक करते हैं, ये फर्स्ट प्रोग्राम की कॉल होने वाली, देखते कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी जी खैर. तुम बताओ कि कैसे सगर मौजूद आए हो? आसिफ भाई साला खुश आयो. कड़ी भली थी लगी माना तुम गाल बुद्धि हाँ तुम कड़ी तरफ वनो है अच्छा चलो डी स्किन वाली तुम लगाए जो
1: अच्छा बई लगाए
0: चलो बई लगाओ मिक्स करे फार्मूलो ठही वेंदो जी जी कुछ डी पहले किथे किथे अवेलेबल है किथे तव्हां जे एरिया में मिले थी कोन थी मिले वाह वाह जबरदस्त दिल खुश करे छॾे अला हाणे दोस्तनि खे यादि करे वेठो जल्दी अवेलेबल आहिनि. तव्हां बि अगरि पुछा कराई त मूंखे ॿुधायो पिया, अगरि न पुछा कराई त तव्हां पुछा कराए वठो बाबा. ॾिसो त साईं किथे किथे अवेलेबल आहिनि, मिलंदा कोन था मिलनि. जीअं थोरो चवंदा आहिनि खंगो खुड़को ख़बर पए वेहण सां कुझु बि न मिलंदो. ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 03-22-13-22-88. नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: आई केरे से सगड़ा सोनी छोकरी. दुआ जो दुआ लगी वही असांगे साईं. अच्छा दुआ तव्हांखे तव्हांजी दुआ लॻंदी आहे कोन थी लॻे न पंहिंजी न लॻंदी आहे पंहिंजी न लॻंदी आहे तव्हां मुंहिंजे लाइ कंदा की मां तव्हांजे लाइ कंदमि सही
1: आहे
0: ईअं ई आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे मूंखे ॿुधाए दुआ प्रोग्राम ॿुधो पिया अच्छा तव्हां मालूमात कराई त वाइट एज जा मार्केट में रेशम गली में मिली वेंदी आराम सां चलो चक्कर लॻायो न रेशम गली जो शॉपिंग करे ईद वेजी अथव ख़बर अथव शॉपिंग कयो त वठी अचो ज़रूरु वाइट एज या डी स्किन इन्हनि ॿिन्ही मां जेका वणेव चलो सही आहे ॿियो कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदी दुआ दुश्मन खे सलाम अथव दुश्मनो ॿुधो था चलो दुश्मन खे सलाम पहुची विया दुश्मन खे सलाम पर छो ॾींदी
1: आहे
0: चलो इहा भली ॻाल्हि आहे दुश्मन खे अञा साड़ियो साड़ींदड़नि खे साड़ींदासीं छा चवण चाड़ींदासीं चलो दुआ थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई इलाही भलो लॻंदो आहे दुआ सां ॻाल्हाए थैंक यू अलाह हाफ़िज़ ओकिरी दुआ मालूमात कराई पर दुआ खे कोन मिलिया प्रोडक्ट दुआ जे रेशम गली मां मालूम कराईंदासीं रेशम गली मां बिल्कुलु तव्हांखे मिली वेंदा तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां मालूम करायो अगरि तव्हांखे रेशम गली वेझी आहे लाड़काणे वारनि माण्हुनि खे त उहे रेशम गली मां वठी अचनि अगरि तव्हां ॿिए सिटी मां असांखे ॿुधो पिया कंहिं ॿिए शहर मां ॿुधो पिया ॻोठ मां ॿुधो पिया त तव्हांजे एरिया में मिले थो कोन ॿुधायो त ख़बर त पवे ओके जनाब सो कॉलिंग नंबर 0333221322 एंड 88 नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां सगर मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
0: भाई कैसे ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: प्रोग्राम सुन रहे अजीम भाई
2: जी जी भाजी सुन रहे हैं स्किन
0: ओके मुझे बताएं प्रोडक्ट के बारे में मालूमात ली आपने अपने करीबी जनरल स्टोर से पूछा मिल रहे हैं नहीं मिल रहे
2: पूछा है भाजी अभी तक आए नहीं है बोलते दो चार दिनों में आ जाएंगे
0: चलिए ये चीज जबरदस्त है और बताएं क्या कहना चाहेंगे
2: बस भाजी आपकी टीम को सलाम और सुनने वालों को सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच अजीम भाई आपने कॉल करी
2: मौजी गुलाम कादिर
0: जी जी
2: मौजी गुलाम कादिर को सलाम मंशार खान को सलाम
0: जी जी
2: अब्दुल अजीज राजड़ी को सलाम
0: ओके थैंक यू सो मच अजीम भाई आपने कॉल करी बहुत अच्छा लगा और आपके एरिया में भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे बस आप नंबर के ऊपर रابطे जो है ना वो बहाल रखिएगा और डायल करते रहिए 0333221322 नेक्स्ट कॉलर देखते कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम भाजी अजीज सुल्तान कलाए जो गोश डेंगार फरगरी का
0: अजीम भा खुश आयो
3: गाओ गाओ आ खुश आयो जोर जो खैर
0: सफा मजे में प्रोग्राम बुदो पिया
3: जी जी प्रोग्राम बुदो पिया तमाम सुठो भी है पी कई बेओ
0: ये नी दिल जाए क्या
3: जी जी हां प्रोग्राम पर आसा जे डेंगार जे शहर में अजा जो को आई क्रीम यो तो अजा कोन आयो है
0: केड़े शहर में अच्छा चलो तव्हांजे हिन शहर में ज़रूरु अवेलेबल कराईंदासीं पर जेको मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां थी प्रोग्राम हुन नंबर ते तव्हां हिकु दफ़ो कॉल करे वठिजो चलो ठीकु आहे कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा जी ओके ओके ओके थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ मोहबतूं तव्हांजो ओके जनाब कॉलिंग नंबर 0333221322 नेक्स्ट कॉलर इसु केरे से सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: केरे से सगर दा
4: सीमा पे गने यार खाने
0: का नालो
4: सीमा
0: नालो
4: बिस्मा
0: सही मां थोड़ी बोड़ी भी आया अच्छा बिस्मा तव्हां पहिरियों टाइम जो का कॉल कई आहे हलो बिस्मा आवाज़ तव्हांजो बि न पियो अचे हाणे सफ़ा सही थो अचे बिस्मा तव्हां ठीकु आहियो असां बि ठीकु आहियूं सफ़ा ठीकु प्रोग्राम ॿुधो पिया बिस्मा रहमतपुर मां चलो ठीक है रेशम गली वंजो ना आड़ी दे शॉपिंग करने ते वठी अजो चले केने दोस्त जी जी जी याद क्यों
4: मेना खाला
0: जी
4: आई मुवारी भाई जी सेना से मुवारी आपी बुधे की नाने प्रोग्राम
0: जी जी
4: ये देखो बुधे तो नंग सलाम
0: ओके जी वालेकुम
4: सलाम
0: थैंक यू सो मच बिस्मा सनी प्रोग्राम में कॉल कई माशाल्लाह सुनी छोकरी हुई रहमतपुर खां असन जो प्रोग्राम बुधन पया वाह वाह वाह वाह गानो एकड़ो मौजूद है गानन जो फरमाइश शुक्र थी वयो है मैं सोचा पई त गाना भी साथ साथ लगाइंदा अचू जी तमाचा गाना भी गड़गड़ हलंदा अचन आई साईं वडे के चवां त ही वारो गानो डाडो भलो गानो आहे

रीजन आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आप व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे से। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और साथ साथ आपके मैसेजेस हैं। तो जी ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम टीचर, क्या हाल है आपके और आपकी टीम के, आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। आप हमारे साथ हैं लाड़काना से इमरान अली बिरोही। इमरान भाई आपको वेलकम हो गया। ये मीरपुर खास से हमारे साथ ही अब्दुल्ला महर के थे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूँ। वाह वाह वाह वाह, यूज क्यों अल्लाह रखियो मेमन। और हजार खान कोरकानी हमारे साथ हैं। सलाम लाड़काना, अस्सलाम वालेकुम आरजे सिद्रा मुस्कान जी। ये शायरी दिल से पढ़िएगा। हाजिर हाजिर, दिल से पढ़ूं था छाता जो शायरी में, एकड़ो मिनट रुको। ओके जी लिखते हैं कि ये दिल के रिश्ते बेवफा हो नहीं सकते, आप भले हमें भुला कर सो जाएं, हम आपको याद किए बगैर सो नहीं सकते। मंजूर सकी रानी का सॉन्ग लगाइएगा। थैंक्स। ओके मैं कोशिश करूंगी आपका गाना सुनेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और कश्यप कहती हैं आप ही मुझे आज निगत का गाना तो सुनाइएगा, आज मेरी कॉल लगेगी या नहीं, नंबर तो बहुत ट्राई करती हूँ पर जब मेरी कॉल करें आप पिक न बाबा, यो मुझे बस समझ है तमाशा छोकरी निकाली हो रहा जेंट लगी हुई आप बस नसीब बचे गाला। और कहती हैं आप इसे डो जी जी लगे तो तमाम भी मुंह आगे निगत नाज जा फेन आयो सो बिल्कुल निगत नाज की हलाइंदा सी आई ही वारो गानो ता बुदो गाने से गड़ो गड़ सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी वठू था वो वरी जल्दी मोटी बजंदा ता नींदा सी तमा सफाई ते बैठा हो जो काडे भी न वंजो ओ ही मनी ओ ही मोटा थी। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड दी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी।

0: It's 2:30. It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Sindh Dental Clinic, Dr. Rafiq Ahmed, Consultant Dental Surgeon, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA Islamabad. Asawad bagir taklif aje dand kadhya ain nama dand lagaya vinda ahine. Har kam jadid technology sa kayo vidu ahe. Jarasim kha paak ozar. Vakt subu 8 vage kha majhad 1 vage tain. Pato Nazd Gul Hotel Halani. Raabte jilai 0300-5163-088.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-85-569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में बातें होती हैं, प्रोग्राम में फन होता है, प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बिल्कुल जी, यहाँ पर आप लोगों ने जो है अगर इस्तेमाल करने हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आप ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एश में ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है। सोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपको सोप मिल रहा है। फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फेस वॉश मिल रहा है। अगर आप लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानब आते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। बिल्कुल जनाब, ये दो प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार शुदा है। ये जनाब इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है। पाकिस्तान में दो तीन प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है, तो उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। खूबसूरती को बढ़ाएंगे तो आप यकीनन बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत होते जाएंगे। तो बिल्कुल जी, आप जो है कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर हमारा ऑन है और कॉलिंग जो है ना सेगमेंट आपका जारी और सारी यहाँ पर कॉलिंग आपकी ली जा रही है। तो कॉल कीजिए कॉलिंग नंबर 0332132288। ये कॉल पिक करते देखते कौन हमारे साथ मौजूद होते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरे से गड्डा
1: शिकापुर खान बाजी जमालदीन भाई।
0: ओके जमालदीन भाई, साला खुश आयो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आज सब सब खैर आता बाजी, खुश आदा खैर।
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में। प्रोग्राम बुदो प्या।
1: जी जी बिल्कुल बुदो प्या बाजी।
0: अच्छा मुखे बुधायो तो हमार मालूमात वर्ती तमाचे एरिया में मिलन पया प्रोडक्ट जके बुधाया पई। अच्छा चलो सही आता, मुझे बुधायो तो दोस्तन की याद कंदा, केड़न दोस्तन की शामिल कंदा।
1: हां इंदा दादा भयो नेमत ला भयो फारूक मीरानी
0: जी,
1: जिक जिक दोस्त बुलन जा के वनी को सबनी के अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच प्यारा भाता प्रोग्राम में कॉल गई। ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर 0332132288 नेक्स्ट कॉल दिसों का केयर एसएस अगर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, केयर एसएस अगर मौजूद है।
1: जी सर, सन सोलंग न्यूयॉर्क
0: आ आवाज ता जो सही ना आयो, नालो बुधाय जो पंजो
1: ना।
0: अच्छा अदा ठीक आयो, मजे में। अलहमदुल्ला ठीक। प्रोग्राम बुधो प्या।
1: जी जी प्रोग्राम बुधो
0: प्या। अच्छा नालो अचे तो प्रोग्राम जो
1: नालो प्रोग्राम
0: चलो चलो। अच्छा वाइट एश, वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम में ब क्रीमूं अथव
1: जी।
0: चलो केड़े दोस्तन की याद कंदा?
1: दोस्तों संगानो साहब मेहर सोलंगी, शहबाजी सोलंगी, आसिफ सोलंगी।
0: जी जी
1: सोलंगी।
0: चलो थैंक यू जी जी। चलो ठीक है, मैं शेला गुल खेलाइंदा, मुझे प्यारा बात अनु मोबाइल प्रोग्राम में तुम कॉल किया है। कॉलिंग नंबर आ है 0332132288। मैं कोशिश कयां पे तमा जो जाम कॉलिंग वठा, जे तमा जाम कॉलर असन प्रोग्राम में शामिल थी सको, सो ही वारी कॉल भी वठूं था जसन तक केयर कॉलर असन सगड मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: के रस सगड आ
2: जहीर
0: जहीर
2: ना जहीर लाड़काने का
0: जहीर कॉल किया लाड़काने का। छाला जहीर ठीक आयो? अलहमदुल्ला ठीक ठाक। प्रोग्राम बुधो पे असो जोहेब?
2: बिल्कुल
0: रहमतपुर में। बिल्कुल छोकरी भी कॉल कई रहमतपुर में, कौन था मिले रहमतपुर में तमाम अवेलेबल कराई था। सही
2: आके
0: तेड़ दोस्त की याद कदा?
2: मुझे दोस्त आसिफ चाचा
0: जी जी,
2: मुझे पासे प्यार हो जेना लाभ दी ना बाने जो शफीक।
0: चलो थैंक यू सो मच, तुम प्रोग्राम में कॉल कई जुहेब लाड़कानी खां, तुम भी कॉल कर सको था। कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉलर इज उनके मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, अभी गिलूर का खालिक लाचारी गला।
0: ओके खालिक भाई, साला खुश आयो।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बता?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। प्रोग्राम बताओ क्या?
3: जी चलो
0: जबरदस्त जबरदस्त तव्हां ॿुधाइजो मूंखे त तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिले पियो तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻा पिया इहो बि ॿुधाइजो सही आहे चलो जबरदस्त कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भा चले जी माशाल्लाह अॼुकल्ह मूं इहा शइ नोटिस कई आहे त मुंहिंजा जेके कॉलर्स आहिनि उहे ॾाढा माशाल्लाह जेके न सुलझल थी विया आहिनि लाला खे जी कॉल ड्रॉप थी वई वाज़रत सो बिल्कुल तव्हां ईअं टॉपिक खे फॉलो कंदा कयो जेका चीज़ तव्हां खां पुछी वञे उन जे बारे में ॿुधाईंदा कयो ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332123228 ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहिड़े सां गॾु आहे पप्पू चांडियो अच्छा प्रोग्राम ॿुधो पिया पप्पू भाई हा माना ॿुधंदा जी जी जी अलाए छा पिया चओ हा थैंक यू सो मच तव्हांजो आवाज़ अलाए छो मूंखे कुझु सम्झ में न पियो अचे सो मोहबतूं पप्पू भाऊ जो नेक्स्ट कॉल वठूं था कॉलिंग नंबर आहे 0332123228 शायदि ही कॉल मूंखां ड्रॉप थी वई सो हलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम
0: केर असां सां गॾु आहे एॾो प्यार सां ॻाल्हायो था पाण अची वियो अथव
4: हा बिल्कुल हिकिड़ी मूंखे दिल में उमेद हुई मुंहिंजो कॾहिं न करे आपी सां मुलाकात थिए मुंहिंजी भेण सां पर अॼु थी वई
0: मुलाकात या काल लॻी वञे चलो मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांजे एरिया में प्रोडक्ट मिलंदा जंहिंजे बारे में ॿुधायां थी
4: इहो मिले ई कोन थो भटारो
0: अला इहो त कम सही न आहे न ॾिस
4: पर तव्हां जेको नंबर ॿुधायो न वरी निमाइजे जो पोइ कुझु राब्तो कंदासीं शाम जो
0: जी जी इन माण्हू सां ज़रूरु ॻाल्हाइजो तव्हांजे एरिया में जल्दी अवेलेबल कराए छॾींदा प्रोडक्ट
4: हा जी जी आपी
0: चलो प्यारा भाउ तव्हां सां ॻाल्हाए इलाही सुठो लॻो ऐं कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा जी जी थोरो गाए ॾेखारियो त मां सर्च करे वठां चलो ठीकु आहे मां ॾिसां थी अगरि मूंखे जी जी मिली वियो त तव्हांजे लाइ
4: करूं बिस्मिल्ला
0: ओके ओके थैंक यू सो मच प्यारा भाउ प्रोग्राम में कॉल कई माशाल्लाह इलाही सुठो कॉलर हुयो और बस कॉलियूं एस ताईं वठंदासीं हाणे कॉलर्स खे जेको आहे थोरो रेस्ट करायूं था या हीअ हिकिड़ी कॉल वठी ॾिसूं अलाए छो दिलि चवे थी सो हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम नेटवर्क इशू ओके सो बसि हाणे कॉलर्स जेके आहिनि थोरो तव्हां रेस्ट कयो वरी इन सलाह सुभाणे तव्हांजी कॉल्स वठंदासीं प्रोग्राम आहे जनाब असांजो पंहिंजो सोणो सोणो प्रोग्राम जंहिंमें तव्हांखे सोणे सोणे थियण जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो आहे वाइट एश प्रोडक्ट्स आहिनि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि तव्हांजी ख़ूबसूरती आहे ऐं जनाब असां आहियूं

अच्छा कश्यप कहती हैं कि आप ही सिड्डू आए शो में और कश्यप ये हो नहीं सकता, आप ही निगत का गाना लगाइएगा अच्छा सा, और आप ही मेरी कजन है महनू, रुबाब, किंजा और मेरी सिस्टर है अलीजा, फिजा और माविजा, आपका बहुत शौक से शो सुनती हैं हर रोज, और कहती हैं कि इन सबको दिल से वेलकम करें, ये सब आपको सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी परियों को दिल से वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का।

ओके इरम भी हमारे साथ मौजूद है. इरम आपको भी हम वेलकम करते. कहती माँ घोर थिया मुझे प्यारी दिलबर दोस्त. अच्छा कहती है वाइट इश ब्यूटी क्रीम बायोकोन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. बिल्कुल जी आप इस्तेमाल कर रही हैं, आप इसी वजह से ये कह रही हैं. और उसके अलावा ये भाई कोई पूछ रहे हैं कि आपका फेसबुक पेज क्या है. तो हमारा फेसबुक पेज है जी लाड़काना FM 88.8. सर्च कीजिए आपको आराम से मिल जाएगा. अच्छा कश्यप कहती है मुखे साड़ तो थे तो मुझे काल छोने दी लगे. साड़ ना क्यों बाबा. ओके जी उनखां अलावा तव्हांजा कॉमेंट्स आहिनि, तव्हांजा कुझु कॉमेंट्स पढ़ंदासीं. ऐं लॻे पियो त जेके माण्हू कॉमेंट कनि पिया वीचारा चवनि पिया असां सुखी वियासीं. भाॼी तव्हां असांजो कॉमेंट नथा पढ़ो. और ये किशोर भाई कहते हैं कि अधिक कराची में सदर टावर मार्केट में क्रीम पहुचायो त असां बि कॉल ते सच सच ॻाल्हाए सघूं. चले बिल्कुलु सदर में असां अवेलेबल करायूं था इहा क्रीम. सभु अवेलेबल कराईंदासीं. सही आहे.

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना। एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि सना मारवी की है। ये मरवाड़ी सॉन्ग है मेरे ख्याल में, अगर नहीं तो बताइए जरा कि ये कौन सी जुबान में गाना है। बहुत प्यारा गाना है, इस गाने को भी सुनेंगे। और साथ साथ जी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उर्स लगारी भाई लाजवाब शो। थैंक यू वेरी मच चाचा खालिद, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू।

मुझे भी ये लगता है चाचा इस जन्म में तो आपकी खाल नहीं लगेगी. अच्छा मेहताब अली इंटर हमारे साथ मौजूद है. मेहताब भाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया. कहते कुछ तबीयत ठीक नहीं है, दुआ कीजिएगा. जरूर जरूर. अच्छा हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. ओके जी अमानुल्लाह टगर भाई हमें सुन रहे हैं. अमानुल्लाह भाई आपको भी वेलकम. आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच.

बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है, गाना सुनेंगे और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे जनाब कि आपका हमारा जो साथ है ना वो बिल्कुल यहीं तक था, क्योंकि आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त जो है ना वो बिल्कुल करीब आ चुका है। गाना लगाए तो आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा गाना भी सुनने दे दिया करें जालिम, तो बिल्कुल गाना सुनेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद उन तमाम लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया, और जो लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते हैं साइलेंट होगी या फिर शामिल होकर बता देते हैं, आप सब लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। और वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम भाई आप लोगों का अपना है तो आप जरूर से बता दिया करें कि आप हमारे साथ साथ हैं। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है ना ये सारे आप इस्तेमाल करके देखिएगा, उसके अलावा टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, इस्तेमाल कीजिए, लगाते रहिए, खूबसूरत होते जाइए और दुनिया को बता देंगे भाई जान आप भी हसीन है। ओके सो वरीन सलाह तवा से मुलाकात मुझे सुभाणी थियण वारी है, सो पांजो ओ इनो सरो खया रखना, किथे का गलती थी हुजे त मां माजरत कया भाई, सो मोकलानी ना ही बाबू सिन सलामत साथ सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: ईरानी परदेह वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदा इंतिज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतुनि ज़रिए मुमकिन थियो हो. पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंग वेदी दौरान आयो हो, जिनको कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरतहाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना है. खयालन ते बदल बयानी जो मकसद इलाका इसकाम अमन वाले कोशिशों के नुकसान पहुंचाना है.

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत के बेईमान ऐं बार बार मौक़िफ तब्दील कंदड़ करार ॾेई छॾियो। तेहरान ते रचायल यूरेनियम कढण जी इजाज़त ॾियण वारे मुआहिदे तां बि पोइते हटण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अमेरिका जंगबंदी वेंटिलेटर ते आहे। तेहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फिरी वञे थो। कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। तेहरान सां अञा बि मुआहिदे जा इम्कान मौजूदु आहिनि।

अगर कंहिं बि दोस्त खे पोस्ट ज़रिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा। उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट खे बि मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे.
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है. सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120.
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: त ईरान सां जंग बंदी वेंटीलेटर ते बीठल आहे. तेहरान गालियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फिरी वञे थो, जेको क़बूल न कंदासीं. ईरानी अवाम जे हक़नि खे न मञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझु बि न हूंदो. ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीबाब चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठा न कंदो. तेहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़नि जो ॿियो को मुतबादिल नाहे. ईरान जे पार्लियामानी कमीशन जे तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई चयो आहे त ॿीहर हमिलो थियो त तेहरान यूरेनियम जो रचाव 90% ताईं वधाए छॾींदो. मामले जो पार्लियामेंट में बि जाइज़ो वरितो वेंदो ऐं क़ौमी मफ़ादनि मूजिब फ़ैसिलो कयो वेंदो. ईरान ख़िलाफ़ अमरीकी ऐं इसराइली जंग में यूएई बि शामिल. अमरीकी मैगज़ीन वॉल स्ट्रीट जर्नल जी छिरकाईंदड़ रिपोर्ट. वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब जंग दौरान गडियल अरब अमारतनि ईरान जे लावान बेट ते आयल रिफाइनरी खे निशानो बणायो, जंहिं सबबि रिफाइनरी खे बंदि बि कयो वियो. हमिलो अप्रैल में अहिड़े वक़्त ते कयो वियो जंहिं वक़्तु अमरीकी सदर ईरान सां जंग बंदी जो ऐलान करण वारो हो. जंग में शमूलियत यूएई जी शमूलियत जी अमरीका ख़ामोशीअ सां आजिया कई. जवाब में ईरान बि यूएई ऐं कुवैत ते हमला कया. पाकिस्तान ईरानी जहाज़नि जी मौजूदगी बाबति CBC न्यूज़ जी रिपोर्ट खे गुमराह कंदड़ करार ॾेई रद्द करे छॾियो. परॾेही खाते मूजिबि इस्लामाबाद ॻाल्हियुनि लाइ अमरीका ऐं ईरान जा केतिरा ई जहाज़ पाकिस्तान पहुता, जिन जो मक़सदु सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमनि ऐं ॻाल्हियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो. कुझु जहाज़ ऐं अमलो ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में ई मौजूदु रहिया. ॿियो दौर अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो, पर आला सतही सिफारती राब्ता जारी आहिनि. ईरानी परॾेही वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदा इंतज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतनि ज़रिए मुमकिन थियो हो. पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज़ बि जंगबंदी दौरान आयो हो, जंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जी फ़ौजी हंगामी

0: बाबत हुकूमत अमली जोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त एक्सपोर्ट ते बतल सनत मुल्की तरक्की जा हदफ हासिल करण अंटर आहिन। हुकूमत जो समूरो ध्यान एक्सपोर्ट में वाध ए सनतन के सहूलतूं डियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवन कारोबारन ए सनतन के हथी डियण लाइ रिथाबंदी कई वञे।
1: सब एक पेज पर हैं इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, फुल फॉर्म, सब एक पेज पर हैं।

ऐं कॾहिं बि विरहाए नथो सघे। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस इफ़्तिताह वारी तकरीब के ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त GDA खे फॉल करणु सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक ऐं सुठो कम करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वञे, सोशल मीडिया ते मुहिम हलाए पई वञे। शर्जील इनाम मेमण खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह बि कयो। सिंध असेंबली सूबे में गैस जी लोड शेडिंग खिलाफ़ ठहराउ यकराउ सां मंज़ूर करे वरितो। सूबे में गैस जी लोड शेडिंग बंदि करण जो मुतालबो MPA मोहम्मद अवेस पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत ऐं MQMM मेंबर्स बि हिकबायत कई। गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ बि ठहराउ यकराउ मंज़ूर कयो वियो। बिल्किस मुख़्तार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए। सूबाई वज़ीर अज़रा पैचो चयो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत कयूं था। सिंध में कारोकारी जा जिर्गा छो थियनि था? तंजीला कमराणी चयो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो क़तल क़बूलण जोॻो नाहे।

पंजाब में औरतुन के इलासा कंदड़न सा का भी रियायत न थींदी औरतुन लाइ पंजाब के महफूज बनाइण मुंहिंजी पहिरीं तर्जी आहे फ्लिप ते खिताब कंदे पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ चयो त औरतुनि जी ऑनलाइन हिरासमेंट रोकण लाइ बि निज़ाम जोड़े रहिया आहियूं वालदेन बि हिरासमेंट वारे मामले ते धीअरनि जो साथ ॾियनि।

0: में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अम्मा हेडो सो मके छा मिलियो
4: पुटा

0: महसूस।
1: असाय पानी साफ ना है तेंजे करी त सब बीमार त छौ। असा के पानी ए सफाई बिनिन जो ख्याल रखन गुरजे।
2: केदो सयानो पुत्रा मुंजो
1: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो।
3: हां साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो। हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

सिंध असेंबली सूबे में गैस जी लोड शेडिंग खिलाफ़ ठहराव मंजूर करे वरतो। सूबे में गैस जी लोड शेडिंग बंद करण जो मुतालबो एम पी मोहम्मद अवेस पारां पेश कयल ठहराव जी हुकूमत ऐं एम क्यू मेंबर्स बि हिमायत कई। गैरत जे नाले ते औरतुनि जे कतल ख़िलाफ़ बि ठहराव मंज़ूर। बल्किस मुख थे सूबाई वज़ीर अज़रा फज़ल पेचू चयो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे कतल ख़िलाफ़ ठहराव जी हिमायत कयूं था। सिंध में कारोकारीअ जा जलगा छो थियनि था? तंज़ीला कंबराणी जो चवणु हो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो कतल क़बूलण जोॻो न आहे।

0: ईरानी अवाम के हकन के न मञण जो नतीजो नाकामी का सवाय कुछ भी न हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ चुना है ईरान एटमी प्रोग्राम से ठाह न कंदो। तेहरान की डिनल 14 तजवीजन जो बो को भी मुतबादल ना है। ईरान के पार्लियामानी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रजाई चुना है बीहर हमलो थो तो तेहरान यूरेनियम जो रचाव 90% तक वधाए छदी। मामले जो पार्लियामेंट में भी जायजो वरतो वो कौमी मफादन मूजिब फैसलो कयो वेंदो। ईरान खिलाफ अमरीकी इसराइली जंग में यूएई भी शामिल हो। अमरीकी मैगजीन वॉल स्ट्रीट जर्नल की छिड़काइंदड़ रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब जंग दौरान गडियल अरब अमारातुन ईरान के लावान बेट से आयल रिफाइनरी के निशानो बनाया जै सबब रिफाइनरी के बंद भी कयो वो। हमलो अप्रैल में अड़े वक्त ते कयो वो जै वक्त अमरीकी सदर ईरान से जंग बंदी जो ऐलान करण वारो हो। जंग में शमूलियत यूए की शमूलियत की अमरीका खामोशी से आजियां कई। जवाब में ईरान बे यूएई ए कुवैत ते हमला कया। पाकिस्तान ईरानी जहाजन की मौजूदगी बाबत सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के गुमराह कंदड़ करार देई रद्द कर छो। परदेही खाते मूजिब इस्लामाबाद गालने लाए अमरीका ईरान जा केतरा जहाज पाकिस्तान पौता जिनो मकसद सफारती अमले सिक्योरिटी टीमन गालन वाले अमल के आसान बनाने हो। कुछ जहाज ए अमलो गालन की बेदौर के नजर में रखंदे पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। बो दौर अजा बाजाबा शुरू ना थो पर आला सतही सफारती रबा जारी आन। ईरानी परदेही वजीर जो पाकिस्तानी दौरों भी मौजूद इंतजामी ए लॉजिस्टिक सहूलत जरिए मुमकिन थो हो। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो जो कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना है। ख्याल से बदल बयानिए जो मकसद इलाकई इस्तेहकाम अमुन वाल कोशिश के नुकसान पहुंचाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ नार मुल्क में भाण की सप्लाई चेन मुतासर थे सबब एशियाई मुल्क में मुतबादल फरहमी की हिदायत कर छी। वजीर आला सतही इजलास दौरान भाण के अथरादू कोट ए जखीरो कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई जो हुक्म दींदे है लागापियल वजारतू ए इदारा भाण की फरहमी की मुसलसल निगरानी कन ए रबी तोड़े खरीफ लाए जजे मकदार में भाण जहा जखीरा यकीनी बनाया वन। गिजाई तहफुज यकीनी बनाने लाए जरई शोबे जो जरूरतू पूरी करण हुकूमत की पेरी तरजीह है।
1: सब एक ट्वीट कर रहे हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पूरी कॉम सब एक ट्वीट कर रहे हैं। कोई आपस में कोई डिफरेंस कहीं पे नहीं है। ये उफाओं के हद तक सोशल मीडिया के हद तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं। आप देखिए कि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक मतलब वफाक की हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप उसमें सिंध की तकसीम भी लेकर आ गए तो सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी कुछ भी हो जाए 28वीं आए या 2800 तब्दी में आ जाए।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हेलो वर्णा खबर ना है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो हूँ दिया
4: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है सोच।

0: किचन है त तव्हां हुनखे रोज अंडा खाराइजो, मंझंदि जी मानी में सूफ ॾिजो, त जीअं स्कूल में मुंहुं घुर थकियल थकियल न हुजे।
1: ॿारनि में कमज़ोरी अक्सर ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़नि जी घटिताई हूंदी आहे, जेका उन्हनि जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणिजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: कोन तोखे मुंहिंजो रओ पाए तयार थियण जो?
3: तू आज भी हसी
2: थोरो पाए त ॾेखार।
4: न मां

0: पुट हाणे तूं मां थियण वारी आहीं पंहिंजो ख़्यालु रखणु ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी आहे
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डीपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000
4: उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
6: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो हाणे वक़्तु आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयारु कयल जेका ॾे कुदरती निखार साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003

इन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301 54 34 56 ऐं तौक़ीर अहमद 0306।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अहाजो चेरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो. Hame Diamond Glow Bleach Cream सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो. Hame Diamond Glow Bleach Cream, तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो. Hame Diamond Glow Bleach Cream, चेहरे जी असल चमक जो राज.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, आई बा अख्तियार 3S डीलर. आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर. सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई. 0307-359-2120.
4: जो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही हां, भेरो भेरो मां थी रही आही ना, मुझो भी इयो ही हाल हो.
5: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी, मां ता एत्रो थकी थी पवा, छा कयो हो.

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़र अंदाज़ न करियो। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां

0: 0301-91-8151. डॉक्टर साहब के भलीका चवंदासीं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि डॉक्टर साहब जूं जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में डॉक्टर साहब आया आहिनि ऐं डॉक्टर साहब जी इहा हिकिड़ी मोहबत आहे जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा रहनि था। गुरदुबी ख़ासकली खां परवानो ज़ुल्फ़कार अली ख़ासकली साहब जूं ख़ासि महिरबानियूं मोहबतूं आहिनि। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था 0301-91-8151 ते कॉल करे ऐं शामिल थी सघो था। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़। डॉक्टर साहब पंहिंजे मौज़ू खे अॻिते वधाईंदा हलूं था। इन खां अलावा ॿिया जेकी मुख़्तलिफ़ असांजा प्रोग्राम में माना जेकी मरीज़ आहिनि या जेके व्यूज़ ॾींदा रहनि था उन्हनि जे बारे में असीं जीअं तव्हां गुर्दे जी ॻाल्हि कई हिन जी पित जी पथरी जी, ख़ासि तौर ते माण्हू चवंदा आहिनि त साईं पित जी पथरी नाहे निकिरी सघंदी ऐं तव्हां वटि ॾिसो हिकिड़ो होम्योपैथिक में निकिरी वञे थी, त इन जे लाइ अवां छा सजेस्ट कंदा आहियो ख़ासि तौर ते ट्रीटमेंट खां अलावा जेकॾहिं उन्हनि खे थिए थो या वरी जेकॾहिं पितो माण्हू कढराए था अचनि पिया उन्हनि सां वरी मादे जो मसलो थी थो वञे पियो, उन्हनि खे छा चवंदासीं?
1: तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे ऐं वाक़ई बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त जॾहिं पितो जेके असांजा फैट्स हूंदा आहिनि उहो पितो अख़राज कंदो आहे, पर जॾहिं पितो पंहिंजो कमु छॾे वेंदो आहे या पितो जॾहिं रिमूव थी वेंदो आहे त पोइ सारो प्रॉब्लम सॼो लोड जेको आहे सो न मादे ते अची वेंदो आहे ऐं पोइ मादो हमेशह डिस्टर्ब रहंदो आहे, उनजे करे पेशंट खटियूं खटियूं ढकारियूं उनखे ईंदियूं आहिनि, वात में पाणी अची वेंदो आहे, पेट फूलजी वेंदो ऐं हां में थींदो आहे। इहा तकलीफ़ ख़ासि करे राति जे टाइम में जेको आहे सो उन पेशंट खे थींदी आहे। जिन खे इहे थींदड़ आहिनि उहे ज़रूरु जेको आहे सो इन ॻाल्हि खे नोटिस कंदा हूंदा त उन्हनि खे इहा तकलीफ़ राति जे टाइम में ऐं तमामु हिकिड़ी दर्दनाक तकलीफ़ थींदी आहे ऐं तमामु घणी तकलीफ़ जॾहिं वञी उहो हॉस्पिटलाइज़ थींदा आहिनि, ड्रिप्स वग़ैरह लॻंदियूं आहिनि ऐं इंजेक्शन्स वग़ैरह, तॾहिं उनखे आराम मिलंदो आहे। लेकिन होम्योपैथिक में जेको आहे सो जॾहिं ट्रीटमेंट ॾिनी वेंदी आहे त उन में इहो गाल ब्लेडर खे रिमूव करण जो सवाल ई पैदा न हूंदो आहे, छो जो इहे स्टोन्स जेको आहे सो निकिरी वेंदा आहिनि ऐं ॻाल्हि आहे ऐं वरी पेशंट जेको आहे पेशंट जो मादो सही तरीक़े सां कमु कंदो आहे। सो इन जे करे ई जेको आहे सो अच्छा जेकी तव्हां पुछो त जेकॾहिं इलाज खां अलावा जेकी देसी ॾसनि जे हवाले सां असां ॻाल्हि कयूं त ॾिसो कुदरत जेको आहे सो उनजी हर शइ में शिफ़ा रखियलु आहे। जीअं मिसाल जैतून जो तेल आहे, अल्ला ताला जैतून जो ज़िक्र क़ुरान शरीफ़ में कयो आहे ऐं जैतून जे तेल में शिफ़ा आहे। अहिड़े तरीक़े सां 40 ॾींहनि ताईं हिकिड़ो कामयाबु नुस्ख़ो मां हमेशह ॿुधाईंदो ईंदो आहियां ऐं हाणे त जेको आहे सो हर को अव्हां खे ॿुधाईंदो बि हूंदो त 40 ॾींहनि ताईं जेकॾहिं हिकिड़ो चमचो सुबुह जो नेराने नीम गरम गिलास पाणी में अवां जेको आहे सो हिकु चमचो जैतून जो तेल, हिकु चमचो माखी ऐं हिकु चमचो लीमे जो रस जो मिलाए तव्हां पीआरींदो पेशंट खे त उहो अल्ला ताला जी महिरबानी सां उहो एतिरी जेको आहे सो पंहिंजी ताक़त रखे थो जो उन पथरी खे जेको आहे सो बिल्कुलु ॻारे थो ऐं उहे जेके असरात आहिनि जंहिंजे करे थिक वॉल्स थी वञनि थियूं ऐं जेको आहे सो गाल ब्लेडर जूं ऐं तकलीफ़ आहे उहा घटिजणु शुरू थी वञे थी। बेशक मेडिसिन्स पंहिंजियूं ॾींदा आहियूं लेकिन इहे बि शयूं गॾु पेशंट खे जेको आहे सो ॾियण सां काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे। त मां हमेशह चाहे अच्छा इहा ई साॻियो ई नुस्ख़ो तव्हां चाहे किडनी स्टोन कंहिंखे आहे उनखे बि तव्हां ॾींदो त उनजो बि इहे स्टोन जेको आहे सो ॻरणु शुरू थी वेंदा आहिनि। लेकिन ख़ासि करे गाल ब्लेडर जे हवाले सां ॻाल्हि कयां त गाल ब्लेडर में इहो नुस्ख़ो तमामु कामयाबु आहे ऐं असां इहो ई नुस्ख़ो जेको आहे सो दोस्तनि खे ॿुधाईंदा आहियूं। इन मां काफ़ी
0: सारो सभु तमामु इहो बहितरीनु हिकिड़ो तव्हां नुस्ख़ो ॿुधायो। मां चवंदुसि इहो नुस्ख़ो अञा बि तव्हां रिपीट कयो जेके दोस्त माना न सम्झी सघंदा आहिनि, छो जो हिकु दफ़ो पहिरियों उन्हनि जो तवजो बि घटि हूंदो आहे त भले हिकु दफ़ो रिपीट कयो जीअं उहे आसानी सां उनखे नोट बि करे सघनि, ॿुधी बि सघनि ऐं असीं उनखे चवंदासीं 0301-91-8151 ते अवां खां कॉल करे पुछी बि सघनि था नुस्ख़ो।
1: बिल्कुलु जैतून जो तेल जेको आहे सो मशहूरु हूंदो आहे। हिन में जैतून जे तेल में ॿ क़िस्म जा तेल ईंदा आहिनि, हिकिड़ो ईंदो आहे मालिश जे हवाले सां जेको ऐं ॿियो ईंदो आहे यानी पीअण जे हवाले सां। पीअण जे हवाले सां तव्हां कंहिंखे बि कंहिं सुठे मेडिकल स्टोर वारे खे या पंसार वटि वेंदो या कंहिं वॾे सुपर जनरल स्टोर
0: में मतिलबु खाइण में खाधे पीते में
1: इस्तेमालु कजे थो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल उनखे चइबो आहे, एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल। ॿाहिरिनि मुल्कनि जा बि अचनि था असां वटि।

0: पाकिस्तान जा बि अचनि था कोड़ो बि मिली वञे त वधीक उहो बहितर आहे एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल जे नाले सां यानी जेको पीअण जो या खाइण जो तेल इस्तेमालु कबो आहे उहो चमचो हिकिड़ो ऐं चमचो सिंधी माखी जो चमचो जेको आहे सो लीमे जे रस जो इहे तव्हां पाणी में जेको आहे सो नीम गरम पाणी में विझी करे ऐं इस्तेमालु कराईंदो पेशंट खे त अलाह ताला जी महिरबानी सां चाहे किडनी स्टोन आहे चाहे गाल ब्लैडर स्टोन आहे उहा जेको आहे सो बिल्कुलु ख़तमु थी वञे थी
1: तमामु बहितरीन सामिन खे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर एफ एम 94 तव्हांजी ख़िदमत में लाइव पेश कयो पियो वञे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे जेको मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहियो आहे डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि डॉक्टर साहिबु तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं डॉक्टर साहिबु तव्हां आख़िर में असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा साईं
0: जी सर बिल्कुलु काल जे तरफ़
1: हा काल हिकिड़ी शामिलु कंदा हलूं था पहिरीं ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो पर हीअ बि मिसकाल थी चुकी आहे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदासीं
0: जेको आहे सो पैगाम इहो ई हूंदो आहे त पंज वक़्त जी निमाज़ जी पाबंदी ज़रूरी आहे सदिको ज़रूरु ॾींदा कयो ऐं सदिके सां जेको आहे सो हर बीमारी हर तकलीफ़ दूरि थिए थी ऐं उनखां अलावा जेके बीमार आहिनि उन्हनि जे लाइ या हॉस्पिटलाइज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो या जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो ऐं असांखे ज़रूरु दुआ में यादि कजो वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि असांखे ॿुधाईंदा हलूं डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि 0301-2196-851 अवां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबतो करे सघो था काल जो सिलसिलो अञा बि जारी आहे डॉक्टर साहिब पैगाम पंहिंजो ॾेई चुको आहे पर असांजी कोशिशि हूंदी आहे त वरी बि जेको काल करे थो भला हुनखे डॉक्टर साहिबु शामिलु कंदा हलंदा हिकु बि काल शामिलु करे था छॾियूं बिहारी करे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: साईं मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए जी जी भली कार चवंदा अली नवाज़ साहिब खे ठीकु आहियो त भई ठीकु आहे मुंहिंजा साईं
2: ख़ुशि आहियो
1: दुआ आहे अलहमदुल्ला छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां खबे पासे या सॼे पासे या मथे सीने खां या हेठि पेट खां
0: किचरो अची वेंदो आहे या यूटीआई इंफेक्शन थी वेंदो आहे या स्टोन हूंदो आहे या जेको आहे सो गैस्ट्रिक पेन बि पइजी सघे थो सो हुन अधे खे इहो ई चवंदासीं हिकु त जेको आहे सो जीरो सौंफ़ अधु चमची रोज़ाना राति जो पाणी में काढ़े ऐं उहो काढ़ो पीअनि इनशाला ताला फ़र्क़ु पइजी ईंदो वरना रूबरू क्लिनिक ते सुभाणे मां क्लिनिक ते हूंदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक बहितर
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु सामिन डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे गुर्दे जी पथरी आहे मसाने जी पथरी आहे पिते जी पथरी आहे नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद वधियल आहिनि का बि बीमारी लाइलाज न आहे अव्हां खे पुराणे खां पुराणो स्किन जो मसइलो आहे जीअं 2022 खां वठी असीं अक्सर ज़िकिर कंदा आहियूं त स्किन जा तमामु घणा इशूज़ आया ऐं काफ़ी मरीज़ अहिड़ा जिन खे 5 साल 4 साल 3 साल थिया आहिनि ऐं उन्हनि खे 10 साल थिया आहिनि स्किन जा प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं उहे सिहतयाब नथिया थियनि पिया तव्हां कुझु चवणु चाहियो था
0: डॉक्टर साहिबु माशाल्लाह काफ़ी सारा पेशंट्स जेको असां डील कया आहिनि ऐं अलहमदिल्ला काफ़ी सारा उन्हनि खे शिफ़ायाब थी चुकिया आहिनि
1: तमामु बहितरीन त जुली घणी 10 सालनि जो पेशंट आहे स्किन जो त उहे बि सिहतयाब थी वञनि था मरीज़ भले स्किन जो प्रॉब्लम आहे नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद आहिनि अव्हां खे फालिज आहे जेके बिल्कुलु बि घुमी न आणे सघंदा या जिन खे संधनि जो सूरु जोड़नि जो सूरु जेके कुंदरक वारा आहिनि डॉक्टर साहिबु वटि अहिड़ा बि मरीज़ आया जेकी गाॾी मां लहंदा कोन हुया पर वक़्तु गुज़रण खां पोइ जॾहिं डॉक्टर साहिबु इलाजु शुरू कयो त उन्हनि जो इहा पोज़ीशन बीठी त माना उहे सिहतयाब थी विया ऐं पाण डॉक्टर साहिबु वटि ईंदा हुआ हिकु काल जे कॉलर जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम जी अदा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए नज़ीर खोसो साहिब खे भली कार चवंदा बलोचिस्तान खां ॻाल्हायो पियो बलोचिस्तान किथां ॻाल्हायो पिया मुंहिंजा साईं अच्छा सोबतपुर बलोचिस्तान खां छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां
2: अच्छा
1: अध मथे में सूर हूँ सजे पासे ना खबे पासे ना वेबसाइट के थ्रू पा बुध या आस पास में आया हो सिंध में हलो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन डॉक्टर साहब बुधाइंदो जी डॉक्टर साहब
0: भाजी मेहरबानी असा के बलूचिस्तान मा जेको असन कॉल कई है अदे जरूर बुधाइंदा से खफान जो सूर या मेग्रीन पेन या अद मथे जो सूर जेके चवंदा आयो त इन हवाले सां अदे के चवंदासीं त असां वटि होम्योपैथिक में कामयाबु इलाज मौजूदु आहे जेकॾहिं काफ़ी दफ़ा ॿिए हंधि इलाज कराए चुको आहे फ़र्क़ु न पियो आहे त असां वटि मेहरापर जेको आहे सोचंदा आहियूं रूबरू ॾेखारे दवा वठी सघनि था छो जो काफ़ी सारा बलोचिस्तान जा दोस्त असां वटि ईंदा
1: आहिनि जीअं पहिरियां ईंदा झलमंगसी बलोचिस्तान खां ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान खां त हीअ बि उतां जो असां
0: वटि पेशेंट बलोचिस्तान जा मौजूदु आहिनि जेके कोर्स ते आहिनि ऐं ईंदा आहिनि बहरहाल अधे खे ॿुधाईंदासीं त उस्ताद कुद्दूस हिकिड़ो खमीरा माजून ईंदो आहे फ़िलहाल जेकॾहिं असां नथा अची सघनि त उहो तव्हां वठी करे अधु चमची सुबुह शाम नेराने इस्तेमालु करे सघंदा ऐं ख़सख़स राति जो अधु चमची खीर में काढ़े ऐं उहो पीअनि इनशा ताला उन सां बि अलाह ताला हुनखे काफ़ी शिफ़ा
1: तमामु घणी महिरबानी सामिन खे ॿुधाईंदा हलूं सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि 0301 9196 851 डॉक्टर साहिब जो नंबर आहे डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि मालूमात ॾींदा आहिनि असांजे मौज़ूज़ ॿुधंदड़नि खे ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां उहे मरीज़ सिहतयाब थी वञनि था का बि बीमारी लाइलाज नाहे अव्हांखे कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो मथे जो सूरु हुजे अधु मथे जो सूरु आहे इन खां अलावा तिरी वधी वञे थी हेपाटाइटिस बी आहे सी आहे जिगर जूं ॿियूं बीमारियूं आहिनि उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि जंहिंजो कदु नंढो आहे औरतुनि या मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कनि था इन ते प्रोग्राम जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी जे तरफ़ ई वञे पियो पर इन खां पहिरियां असां हिकिड़ी ॻाल्हि अञा प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं था ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो अस्सलाम वालेकुम
2: औलाद
1: नथी थिए पई डॉक्टर साहब अव्हांखे ॿुधाईंदो अव्हां एफएम ॿुधो या हिते लाइन ते रहो ॿुधो जी डॉक्टर साहब
0: बिल्कुल देखी चवंदासीं त हिकु त जेके हुन जो टेस्टूं मुकमल आहिनि थियल त उहे रूबरू खणी अचनि ऐं ॾेखारे हुन जो इलाज बहरहाल होम्योपैथिक में मौजूदु आहे ऐं हुनजी जॾहिं पेशेंट साम्हूं
1: जी
0: साईं
1: तव्हां एफ एम ॿुधो या वरी डॉक्टर साहिब खे ॿुधो
0: बिल्कुलु मां अधिक इलाज मौजूदु आहे ऐं अव्हां रूबरू अचो ऐं अव्हां टेस्टूं खणी अचो तव्हांखे दवा ॾींदासीं ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे शिफ़ा उहो ई ॾींदो आहे पर असां वटि होम्योपैथिक में अहिड़ा केसिस काफ़ी असां डील कया आहिनि जिन सां अलाह ताला जी महिरबानी सां औलाद थी वियो आहे चाहे 5 साल जो हुजे चाहे 20 साल जो हुजे हुनखे औलाद थी वियो आहे
1: बिल्कुलु यकीन मां सम्झा थो अधे डॉक्टर साहिब जो सवाल जो जवाबु ॿुधी वरितो हूंदो त जेके तव्हांजो रिपोर्टूं आहिनि जेके तव्हांजूं टेस्टूं आहिनि उहे खणी करे तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारियो अलाह सांजी ज़ात ॾियण वारी आहे सामिन प्रोग्राम जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणियुनि जे तरफ़ ई वञे पियो डॉक्टर साहिबु हर अरबा खमीस जुमो छंछरु आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि 0301 9196 851 असांजो नंबर आहे लाइव कॉल जो इन खां अलावा डॉक्टर साहिब जो बि साॻियो ई नंबर आहे तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान अलाह वाही

0: कराची पुलिस अॼु ॾिनल प्रोटेस्ट जे भिटे मयार खे बि ज़ाहिर ॾींहुं अॻु कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां शीमा करमाणी हरे दौरान अंटानो बणायो वियो हो। साॻे ई पुलिस अॼु मंशियात फिरोश औरत खे प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र आई।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ताज़नि नतीजनि ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा। साल 2024 जे जारी कयल चटाभेटी इम्तिहाननि जा नतीजा मुअतल करण जो मुतालबो। इम्तिहानी अमल, मार्किंग ऐं मेरिट लिस्ट जी शफ़ाफ़ जांच लाइ पंजाब जी फॉरेंसिक लैब खां जांच कराइण जी घुर। करप्शन ऐं मेरिट जी रफ़्तार साबित थियण ते मुतालबो। ठहराउ MPA मोहम्मद बास महबूबली जे सेक्रेटरी वटि जमा करायो वियो।
0: गैस जी लोहा पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत ऐं MQA मेंबर्स बि हिमायत कई। गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ बि ठहराउ मंज़ूर। बल्कीस मुख़्तार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए। सूबाई वज़ीर अज़रा फज़ल पेचूहो जो चवणो हो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत कयूं था। सिंध में कारोकारी जा जरगा छो थियनि था? तंज़ीला कंबराणी जो चवणो हो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो क़तल क़बूलण जोॻो न आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सचल की सरमस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: हाण नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आरबुटिन जेके डियन तवा जे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल्द एक क्रीम की दूरी पर हेमे नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो हेमे नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमे नेचुरल्स।

0: परेशान अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
0: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूम

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: वारी वीडियो सोशल मीडिया ते बाह जीअं वायरल थियण बाद सिंध सरकार में सुजाग थी पई। सूबाई घरू वज़ीर जी सिंध नोटिस वठी छॾियो। कोकेन क्वीन पिंकीअ जो गिरफ़्तारी खां अॻु पुलिस खे ॾिनल चैलेंज वारो बयान बि साम्हूं अची वियो। पिंकी चयो हो त खेसि पकड़ण जी कोशिश कंदड़ रिटायर्ड थी वञनि था पर पकड़े नथा सघनि। बिरान थियण लाइ पिंकी जीअं सोचणो पवंदो।
1: मनुष्यात केस में गिरफ्तार कयल अनमोल उर्फ पिंकी 14 ॾींहनि जे जुडिशियल रिमांड ते जेल हवाले। पुलिस मूजिब गार्डन वारे इलाइक़े मां गुझी इतलाह ते गिरफ़्तार कयल मनुष्यात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी वटां करोड़े रुपियनि जी कोकेन, आइस ऐं ॿी ख़तरनाक मनुष्यात हथ आई, जंहिंजी मालियत करोड़े रुपया आहे।
0: कोकेन क्वीन पिंकीअ खे पुलिस जी ॾिनल प्रोटोकॉल सिंध पुलिस जे भिटे मयार खे बि ज़ाहिर करे छॾियो। कुझु ॾींहं अॻु कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां पहुतल औरत मार्च जे अॻवाननि शीमा करमाणी ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तारी दौरान तज़लील जो निशानो बणायो वियो हो। साॻी पुलिस अॼु मंशियात फिरोश औरत खे प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र आई।
1: पाकिस्तान ईरानी जहाज़नि जी मौजूदगी बाबति सीबीसी न्यूज़ जी रिपोर्ट खे गुमराह कंदड़ करार ॾेई रद्द करे छॾियो। परॾेही खाते मूजिब इस्लामाबाद ॻाल्हियुनि लाइ अमरीका ऐं ईरान जा केतिरा ई जहाज पाकिस्तान पहुता, जिन जो मक़सद सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमनि ऐं ॻाल्हियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो। कुझु जहाज ऐं अमलो ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में ई मौजूद रहिया। ॿियो दौर अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो, पर आला सतही सिफारती राब्ता जारी आहिनि। ईरानी परॾेही वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूद लॉजिस्टिक सहूलियतनि ज़रिए मुमकिन थियो हो। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज बि जंग बंदी दौरान आयो हो, जंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जे फ़ौजी हंगामी सूरतहाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक नाहे। ख़्यालनि ते वधल बयानीअ जो मक़सदु इलाक़ाई इस्तेहकाम ऐं अमन वारियुनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइणु आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03।

पाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: बीच क्रीम कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका डे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बधन मर्दन औरतुन में वजन जो न बधन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-2196-851।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारी जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8559-69।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
3: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे